जा बुरा करते हाल, पलक फड़के हाय के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Nechi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vie pa la burga. Nechi, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पला रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। मैं अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ?
2: सॉरी, आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर दे कम ना रुकन गे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
6: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: How's the Josh?
2: Hi, sir!
1: How's the Josh?
2: Hi, sir!
3: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

वेल आ ही गए हैं हम और इस बार अब नहीं जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है राइट ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स। और वैसे तो आपने मेरा स्वागत करना चाहिए भाई, आई हूँ 3 हफ्ते बाद आई हूँ यहाँ पर। वेल बहुत सी बातें करनी है आपसे और इस बार जो आई हूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसी जर्नी से आई हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए तो यार आप लोग कैसे हैं पहले मुझे ये बताइए। इतनी सारी बातें इतने सारे हफ्तों के बाद में, ओ माय गॉड, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? और ऐसी कोई चीज जो कतर में हो रही है, मतलब आफरीन तुम गई हो और पीछे से ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कतर में ये इवेंट हुआ है, इस तरह से ईद मनी है, ये सारी बातें यार बताइए मुझे। कितने दिन के बाद आई हूँ पता है? 3 हफ्ते बाद आई हूँ। वेल विद दिस, चलिए शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में। वही अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: तुरंत बात सुना खबर का तापमान का हालचाल देखेंगे यहाँ पर
1: यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी 89.6 पर शिवानी इट्स हॉट।

0: वेल देखो ये गाना तो सुपर हिट है ही और वेल आपने ट्यून इन किया है इस सुपर हिट शो में, मतलब आपकी सुबह वाली आदत भाई मिर्ची मॉर्निंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपका स्वागत है विद वन एंड ओनली योर सिंपली आफरीन। और देखिए भाई 3 हफ्ते के लिए मैं गई थी, मैं हज पर गई थी, तो बस वरा गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के साथ में जरा वेलकम वेलकम भी मेरा किया जाए कि नहीं। 5000 1896 वैसे हमारा नंबर है, लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर देखी जाने से पहले, जहाँ हम अब तापमान की बातें करने वाले हैं, तो एक बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज मुझे यहाँ पर नजर आया। हालांकि मैं सऊदी अरेबिया यहीं पर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कतर और सऊदी में काफी डिफरेंस लगता है मुझे, क्योंकि मैं जाकर आई हूँ वहां से। जब मैं कतर छोड़कर गई थी तब सुबह की अजान जो थी, फजर की अजान, कुछ 4 बजे के बाद की थी। एंड नाउ व्हेन आई कम बैक इट्स लाइक सडनली 3:15 AM। एंड सऊदी में जो होता है ना, वहां पे थोड़ा सा 1 घंटा पीछे ही चल रहा है लाइक अजान के टाइमिंग्स। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी तक वो कतर के टाइम जोन में ही चल रही हूँ। एंड सडनली व्हेन आई केम बैक एंड मैं देख रही हूँ कि सुबह 6 बजे ऐसे सूरज सर के ऊपर आकर एकदम खड़ा हुआ है। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच आई रियली फेल्ट। लेकिन आप तो यहीं पर हो ना, आपको तो मतलब ये गर्मी की अब एकदम सी आदत हो ही चुकी है, ये पूरे रूटीन की आदत हो गई है। सो फिलहाल के लिए जहाँ ये आदत हो ही गई है, आज का क्या हाल चाल कहता है हमारा तापमान सलमान, जरा सुन ले।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। अजी वेदर तो देखिए ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 44 डिग्री सेल्सियस पर है, मिनिमम जो है 32 डिग्री सेल्सियस पर है। एक्चुअल जो अभी आप फील कर रहे हो फिलहाल वो है 35 डिग्री सेल्सियस। हवाएं भी चल रही है धीमी धीमी सी 13 किलोमीटर पर आवर पर, लेकिन एक अच्छी बात ये अब मुझे नजर आ रही है दैट ह्यूमिडिटी जो है सिर्फ और सिर्फ 25% पर है। सो विद दिस यहाँ पर कुंवर का मैसेज आ चुका है, वेलकम बैक आफ्टरीन, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी। और बस गुमशुदा हो गई थी कुछ दिन के लिए, अब नहीं होंगी आगे कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं काफी दिनों के लिए, अब बस आ गई हूं मैं

बस फिलहाल तो मिर्ची से कोई गुमशुदा नहीं हुआ है, सारे के सारे लौट गए हैं और आप इंजॉय कीजिए अगला गाना सोनू निगम की आवाज। थोड़ा 2090s का तड़का तो लगना ही मांगता है, क्या बोलती पब्लिक? Enjoy this track on Mirchi's Heart.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generations.
0: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
10: देखो भाई, हमारी तो एंट्री हो गई है यहाँ पर, यानी सिंपली आफरीन की एंट्री। और अगर आपकी एंट्री हमारे साथ हो चुकी है तो भाई 5000 1896 हमारा नंबर है। अच्छा, गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग करते हैं यहाँ पर हरपाल सिंधु भाई। गुड मॉर्निंग कहते हैं दुकान से। जॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, आप दुबई जाना कतर से उतना ही ज्यादा कॉमन हो गया है जितना फ्राइडे ब्रंच का प्लान बनाना। And that is possible only because of Qatar Airways. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen, co-writer on Milchi Mornings. और Qatar Airways ने एक और स्मार्ट मूव अनाउंस किया है। अब दोहा और दुबई के बीच फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली 2 से बढ़कर 5 डेली फ्लाइट्स होने वाली है। इनफैक्ट स्टार्ट हो चुकी है 5th ऑफ जून से ही। मतलब अगर आपका दुबई ट्रिप लास्ट मिनट प्लान हुआ है, बिजनेस मीटिंग सडनली आ गई है या फिर बस दुबई मॉल की क्रेविंग हो गई है, तो ऑप्शन अब काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल ये दिखाई देता है मुझे दैट ये सिर्फ फ्लाइट्स बढ़ने की खबर नहीं है, ये गल्फ रीजन की ग्रोइंग कनेक्टिविटी का सिग्नल है। जब एयरलाइन फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज करती है, यूजुअली उसका मतलब ऐसा होता है दैट स्ट्रॉन्ग पैसेंजर डिमांड है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ज्यादा सीमलेस मूवमेंट बिटवीन पीपल एंड बिजनेस। वेल, यहाँ पर एक और ट्रैवलर हैक नोट लीक कर लीजिए। जब किसी रूट पर कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना, तो कई बार आपको कॉम्पिटिटिव फेयर्स और बेटर टाइमिंग ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। सो अगर आप इस समर में एक वीकेंड गेटअवे सोच रहे हो कि चले यार फ्राइडे सैटरडे है और संडे जरा छुट्टी लेकर वहां के हिसाब से थोड़ा सा लंबा वाला वीकेंड बनाकर आते हैं दुबई से, तो बस फ्लाइट के ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फिलहाल के लिए तो आफरीन जुड़ गई है आपके साथ में राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Zaheer.
5: Zaheer, Zaheer who?
4: Zaheer si baat hai, main hoon, aur koi nahi.
5: Cut, cut, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.
8: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
4: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
8: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
9: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
2: Mirchi One. It's hot.
0: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: Well, मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका. राइट हियर और आफरीन जुड़ गई है और फिलहाल मिर्ची घड़ी में बजने ही जाने वाले हैं सुबह के साथ और जबरदस्त गाने लाइंड अप है. कमिंग अप नेक्स्ट, श्रेया घोषाल की आवाज और साद लमजर्द का साथ, गुल्ली मता. राइट हियर ऑन मिर्ची इज हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: वेल, इस खूबसूरत से गाने के बाद अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है राइट हियर, और तड़कता भड़कता एकदम नया गाना फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। लेकिन उसके तुरंत बाद कतर से जुड़ी हुई एक गर्मा गर्म खबर लेकर आ रही हूँ मैं, यानी सिंपली आफरीन राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो, अगर आपका भी सवाल कुछ ऐसा है अतिथि तुम कब जाओगे, तो अतिथि अब आपको जाना पड़ेगा। इसका जवाब कुछ ऐसा है, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कुछ महीनों से ना कतर में एक स्पेशल रिलैक्सेशन चल रही थी, जहां एक्सपायर्ड या एक्सपायरी के करीब एंट्री वीजाज को एक्सटेंड करने की फैसिलिटी दी जा रही थी। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किया है कि ये एक्सटेंशन फैसिलिटी 7 जून 2026 यानी आज से बिल्कुल होती है खत्म। इसका मतलब क्या है, अब सारे एंट्री वीजाज, चाहे फैमिली विजिट हो, टूरिस्ट हो या किसी और कैटेगरी के हो, अपने ओरिजिनल रूल्स, वैलिडिटी पीरियड्स और प्रिस्क्राइब फीस के मुताबिक ही प्रोसेस होंगे। मतलब आपने अगर याद किया रहेगा कि मार्च या फेब के अराउंड कुछ वीजाज जो थे वो एक्सटेंड किए जा रहे थे, लुकिंग एट द सिनेरियो। लेकिन अब जो है, अब ये बंद हो गया है। देखिए, बहुत लोग वीजा एक्सपायरी डेट देखते हैं लेकिन ग्रेस पीरियड, ओवर स्टेज, पेनल्टीज और सिस्टम अपडेट्स को इग्नोर कर देते हैं, और वही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। तो अभी अगर कोई आपके यहाँ पर रुका हुआ है, कोई विजिटर है, फटाफट से उनकी वीजा एक्सपायरी जो डेट है वो देख लो, और इसके बाद अगर आप सोच रहे हो एक्सटेंड करने का तो फिर भाई MOI से चेक कर लो, क्योंकि कई सारे वीजाज अब जो बस ग्रेस से दिए जा रहे थे, एक्सटेंड करे जा रहे थे, वो आज से 7 जून से बंद हो रहे हैं। वेल विद दिस, मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La fiesta la murga.
0: Milchi, murga.
2: हेलो
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1st September 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे बता रहा हूँ आपको।
5: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
7: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
8: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट,
6: एंटरटेनमेंट। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
7: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: Well, राघव चैतन्य की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और मूवी भले चाहे कैसे भी हो भाई एनिमल, मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस मूवी लेट मी टेल यू, लेकिन गाने आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी. आर यू ऑल्सो? इफ यस, एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

आई एम श्योर बचपन में ना हम सबकी एक फेवरेट चीज हुआ करती थी और वो थी गुल्लक। हाँ जी, वही गुल्लक जिसमें हम सिक्के जमा करते हैं। जब मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी से हमें खुशी से सिक्के मिल जाते तो हम उसमें ना हमारी सेविंग्स करते थे। वेल, हर घर में एक गुल्लक होता ही था, पर कुछ गुल्लक पैसे नहीं यादें जमा करती है, और जब वो गुल्लक खुलती है ना तो सिर्फ सिक्के नहीं पूरी जिंदगी की खनक सुनाई देती है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आप भी मेरी तरह ना एक्शन सस्पेंस लार्जर देन लाइफ ड्रामाज ओटीटी के सीरीज ये सब देखकर थक गए हैं ना, तो बस एक फ्रेश ब्रीज यानी ठंडी हवा का झोंका समीर की तरह ये गुल्लक आ गया है। अब गुल्लक जो हमेशा से लोग देखते आए ना, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो है ना, ये सीजन 5 आ गया है, और ऐसा काफी कम नहीं, पहली बार ही ऐसा हुआ है ओटीटी हिंदी सीरीज में कि कोई सीजन जो सीरीज है वो अपने सीजन 5 तक चला गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये लोग इसे पसंद करते हैं। वेल, गुल्लक जो है, मिश्रा परिवार जो है, फिर से लौट आया है अपनी छोटी छोटी खुशियां, नोक झोंक और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स के साथ। सीजन 5 में भी वही वॉर्म्थ है जो इस शो की यूएसपी है, लेकिन इस बार अन्नु मिश्रा का कैरेक्टर यानी वो मम्मी पापा और दो लड़के, उनमें से एक लड़का जो है वो एक नया कैरेक्टर, वो नया एक एक्टर प्ले कर रहा है, जिसको सोशल मीडिया को लेकर ना बहुत ज्यादा मिक्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी देख रहे हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि अनु मिश्रा का ये नया वाला एक्टर पसंद आए या आप पहले वाले को ही मिस कर रहे हो। वेल, गुल्लक जो है ना, ये एक वेब सीरीज नहीं है, इट्स एन इमोशनल टाइम मशीन। वो 90s वाले मिडिल क्लास फैमिली, या फिर अभी भी अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो ना, तो वो छोटे छोटे लम्हे जिसे हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन आप जब गुल्लक देखोगे ना तो समझ जाओगे कि अरे यार, हमारे अभी भी तो ऐसे ही होता था, अरे ये मम्मी भी तो यही कहती थी। यू विल रियली एंजॉय दिस सीजन 5 गुल्लक, स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव, शुड नॉट बी मिस्ड। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी। हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: लगा ऐसा सही नीति मोहन और कमाल खान की आवाज में गाना और राइट यार तुसी भी एथे आओ अब टाइम हो चला है कि थोड़ा सा गेम शेम भी खेल ले
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर
0: हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका अफरीन के साथ में और इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ मेरा फेवरेट वाला गेम लेकर जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन सुना रही हूँ एंड लेट मी टेल यू अब इतने दिन के बाद आई हूँ ना तो इतना इजी वाला सीन नहीं लेकर आई हूँ तो थोड़ा ध्यान से ये सीन सुनो और बताओ कि आखिर ये कौन सी मूवी का सीन है सो हियर इट गोज
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट
2: जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ वो नहीं जानते हैं उस रेस का सिकंदर मैं हूं।
0: राइट आवाज तो आप लोगों ने पहचान ली होगी और मूवी कौन सी है ये मैं थोड़ी ना बताऊंगी ये तो आप बताओगे 5000 1896 और वेलकम बैक आफरीन के मैसेजेस अभी आ रहे हैं और ये किसका मैसेज है यहाँ पर हुजैब का मैसेज है थैंक यू सो मच हुजैब वैसे आपका आंसर भी बिल्कुल सही है 5000 1896 नंबर है फटाफट से यहाँ पर मैसेज करो वॉइस मैसेज भेजो व्हाटएवर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बहुत दिन हो गए ना भाई गपशप किए हुए गेम शेम खेले हुए तो ये सारे के सारे लोग बिल्कुल हाजिर हो जाओ इंतजार कर रही हूँ तरस रहे हैं मेरे मैन आपके मैसेजेस के लिए एंड दैट्स व्हाट द सॉन्ग सेज अमित त्रिवेदी की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहेगा और मिर्ची थॉट

0: Mix Mirchi.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोलडाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldar.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
2: उससे भी ज्यादा.
1: लॉटरी लग गई?
2: उससे भी बड़ा.
1: तो फिर बताओ.
2: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है. ग्रोसरीज से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम.
0: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच. पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ.
3: कट
4: हू दैट?
3: भट्ट.
4: अरे भट्ट हू?
3: भट भट भट भट भट भट भट. बाइक बहुत आवाज करती है.
4: खट खट हू दैट?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन 89.6 और ये खूबसूरत सा गाना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में, आई मीन इन दोनों की सुपर हिट जोड़ी है ये, इतनी अच्छी गाना है ये। आई डोंट नो व्हाई दिस सॉन्ग इज फील सो अंडररेटेड, है ना। वैसे माय बंधुओं, यहाँ पर बहुत अरसे बाद मैं आपके लिए एक गेम, मतलब वही गेम जो अक्सर खेलती हूँ, इस वक्त पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट लेकर आई थी और आपने गेस करना था कि आखिरकार आफरीन कौन सी मूवी की ये बात कर रही है और कौन सा डायलॉग सुना रही है। वह डायलॉग इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन आवाज़ के साथ और डायलॉग में इतने सारे हिंट्स की वजह से ये डायलॉग बन जाता है आसान। कौन सा है, रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो।
2: जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ।
1: फिलहाल तो भाई इस गेम के सिकंदर जरूर हैं आप, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर मैसेज किया है, हुजैब, कार्तिक एंड सो मेनी मोर, भाई अपना नाम ना लिख लिया करो, सर टाइप कर लिया करो तो ज़्यादा इजी हो जाता है। नीरज का मैसेज आया है यहाँ पर, सुवेल सभी ने आफरीन को मैसेज किया है ये कहते हुए कि आखिर ये आंसर है क्या है। चलिए सुन लेते हैं आपकी आवाज ही।
3: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग।
3: It's a super hot morning.
1: I know. That's right.
3: It's a race 3 from Salman Khan.
1: बिल्कुल सही।
4: The name of the movie.
1: हाँ जी. Race
4: 3.
1: That is right. That is absolutely right. Race 3 का ये डायलॉग, एंड सही मैं कहूँ तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था ये सवाल, क्योंकि अगर आपने ये मूवी नहीं भी देखी है, आपको ये डायलॉग नहीं भी पता है, लेकिन सलमान खान की आवाज़ तो भाई नींद में भी हम पहचान ले, और उनका डायलॉग में ही रेस रेस इतनी बार इन्होंने कहा कि तो बस तुक्का मारा भी जिसने भी रहा रहेगा कि यार ये रेस 3 ही हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। और यस, यहाँ पर मनाली ने भी झट से मैसेज कर दिया कि यार आफरीन ने कहा मैं अपना नाम भेज दो, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना नाम भेज दिया है। सही सही किया है बिल्कुल। विद दिस चलिए आगे बढ़ते हैं रेस 3 का ये अगले गाने की तरफ, मीट ब्रदर्स दीप मनी नेहा भासन की आवाज में ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका सिंपली आफरीन के साथ. और मिर्ची घड़ी में बज रहे सुबह के 8:01 और अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

Hype is saying Jonita Gandhi, Asis Kaur or so many singers in this song. लेकिन तरीका बड़ा अच्छा है भाई ये attention grab करने का, especially हम millennials का. जानते हो ना हमारा favorite गाना है ये चुनरी चुनरी. मतलब start ये गाने से किया और फिर कोई अलग ही गाना, लेकिन मजा आया. फिलहाल के लिए अगले गाने में भी मजा आएगा आपको. मधुबंदी बागची की आवाज, जैस्मिन सनलिस का साथ और शाश्वत सचदेव की म्यूजिक. एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, धुरंधर का ये गाना. और उसके तुरंत बाद कतर में क्या हो रहा है जरूर बात करेंगे इस बारे में. और मिर्ची इट्स हॉट.

Well, दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बेरंग दुनिया इमेजिन कर सकते हो, मतलब ना लाल गुलाब, ना हरा बगीचा, ना नीला आसमान. डिफिकल्ट, राइट? अब इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलने वाला है कतर में. वेल, कतर में शुरू होने वाला है कलर वर्स, जो है एक इमर्सिव और इंटरैक्टिव एडवेंचर, जहां आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं. मिशन है एक फिक्शनल दुनिया कलरामा को बचाना, जो धीरे धीरे अपना रंग खो रहा है. वेल, ये 45 मिनट का एक एक्सपीरियंस है जो आपको मतलब आप में रिस्टोर करने के होंगे, जैसे प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू, सात अलग अलग इंटरैक्टिव जोन्स, चैलेंजेस, टीम वर्क, मोमेंट और फन एक्टिविटीज के थ्रू आप जानेंगे कि कलर्स का मैजिक एक्चुअली कैसे काम करता है. और देखिए ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लाइव साइंस एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं यहाँ पर, क्रिएटिव वर्कशॉप्स होने वाले हैं, स्टेज एक्टिविटीज है, और कलर वर्स कैरेक्टर्स से मिलने का भी मौका मिलने वाला है. तो देखिए, ये होने वाला है कब? ये होने वाला है कतारा में, ये है, और ये 15th of July से स्टार्ट, जून से स्टार्ट होने वाला है. कतरी रियाल 35 इसकी टिकट्स है. और आप तो जानते ही है, अब बच्चों की होने वाली छुट्टियां शुरू, तो अब तो आपको बहुत बड़ा टास्क है इन्हें बिजी रखना. ये तो एक एक्टिविटी की बात हमने यहाँ पर की है, कलरवर्स, जो हमारे कतर में कतारा की तरफ आने वाला है. लेकिन इसके अलावा कतर में बच्चों के लिए अब तो बस शुरुआत है, बहुत सारे इवेंट्स आते रहेंगे. और ये इवेंट्स आप कैसे पता चलेंगे? यहीं पर तो पता चलेंगे, यानी 89.6 जीवन पर. आप फ्रीम के साथ बने रहिएगा अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में. अगला गाना रई से, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स. या माइक सिविल तक आफरीन के साथ अनवर चीज हॉट.

0: Milci.
1: Iskra bana, uskra bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Madam, disturbance aa rahi hai kya abhi?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे
3: हैं? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़े यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
2: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: है मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज, लापता लेडीज का ये गाना और लेकर आ गई है आपके लिए आफरीन कुछ काम की बात। वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपका स्वागत है। और बताइए भाई, मनी टॉक्स के अलावा काम की बात इससे ज्यादा कुछ हो सकती है? देखिए, आईपे का एक्सचेंज रेट आज ये कह रहा है कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.06, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.76, 33.70 पर बांग्लादेशी टाका है और श्रीलंकन रुपीज जो है 92.08 पर है। नेपाली रुपीज की बात करें तो 41.82 पर नेपाली रुपीज भी पहुंच चुका है। विद दिस ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 मिर्ची वन पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी। हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा।
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा।
5: तो फिर बताओ।
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरीज से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
0: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखो दोस्तों, कॉमेडी और ट्रेजेडी की कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और लेकर आई हूँ कहानी अपने अंदाज में। और आपने बताने कि आखिरकार आफरीन कौन सी मूवी की कहानी यहाँ पर सुना रही है। सो वेल, ये गेम बहुत दिनों से नहीं खेला होगा ना आपने। तो चलिए रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय और जबरदस्त तरीके से ये कहानी सुनो और बताओ मुझे ये आंसर। तो कहानी है तीन दोस्तों की, जिन्होंने एक बार गलती से पैसा कमा तो लिया था और तब से उन्हें लगता है कि वो फाइनेंशियल जीनियसेस हैं। अब उनके पास पैसा है, बंगला है, लाइफस्टाइल है, गाड़ी है, लेकिन कॉमन सेंस अब भी नहीं है। एक दिन उन्हें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इतनी अमेजिंग लगती है कोई भी सेंसिबल इंसान इसे तुरंत मना कर दे। नेचुरली ये तीनों अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं। रिजल्ट, पैसा गायब, सपने गायब और तीनों फिर से करके। अब शुरू होता है असली सर्कस। इनफैक्ट इस मूवी का क्लाइमैक्स भी सर्कस में ही है। लोन शार्क्स पीछे, गैंगस्टर्स पीछे, डेंजरस डॉन पीछे, और तीनों एक दूसरे पे प्लेम डालते रहते हैं। बताइए कौन सी मूवी है। 25 दिन में पैसे डबल, सुनते ही अगर आपके दिमाग में अलार्म्स नहीं नॉस्टैल्जिया बजने लगे तो आंसर आपको बिल्कुल मिल गया है। 5000196 इज माई नंबर। फटाफट से बताओ कि आखिर आफरीन ने ये जो कहानी पूरी सुनाई है कौन सी मूवी की है। सुनील कुमार का यहाँ पर जवाब आ चुका है जो बिल्कुल सही है। और ऐसे ही एक एक करके सबके मैसेजेस आ रहे हैं। अबरार हसन का भी मैसेज आ गया है, बिल्कुल सही। अपने नाम फटाफट से अपने आंसर्स के साथ में लिख दिया करें ताकि मैं यहाँ पर आपके आंसर्स के साथ में आपका नाम बिल्कुल यहाँ पर ऐलान करूं। 5000196 मीनवाइल अगला गाना कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में। वैसे ये गाना है तो अच्छी खासी नई मूवी से, लेकिन वाइब्स पूरी की पूरी 90s वाली देता है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: अर्ज किया है
3: इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: एकदम सही सुना तुमने. किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन. कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं. बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो.
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ. बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर.
3: कट.
4: अबे कौन है?
3: उत्तपा.
4: उत्तपा कौन?
3: उत्तपा में दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

फहीम अब्दुल्ला की आवाज, सैयारा का टाइटल ट्रैक और साथ जुड़ गई है मेरी आवाज यानी और बहुत दिनों के बाद यहाँ पर कहानी का सिलसिला चल रहा था और आपके जवाबों का सिलसिला आ रहा था। मतलब मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि भाई इतने दिनों के बाद इतने सारे लोगों के साथ में फिर से जुड़ने का मौका मिल गया है। और वो कॉन्टेस्ट जब होता है ना, इस तरह से जब गेम्स खेलती हूँ तो ज्यादा ये कनेक्शन बनता है ना। तो कहानी सुना रही थी मैं एक मूवी की अपने ही अंदाज में। आपने गेस करना था कि आखिरकार आफरीन कौन सी मूवी की ये कहानी सुना रही है। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से आज की कहानी सुनो। कहानी कुछ ऐसी है, तीन दोस्त होते हैं जिन्होंने एक बार गलती से पैसा कमा तो लिया था और तब से उन्हें लगता है कि वो तो फाइनेंशियल जीनियसेस हैं। अब उनके पास पैसा है, बंगला है, लाइफस्टाइल है, लेकिन कॉमन सेंस अब भी नहीं है। एक दिन उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ऐसा लगा उन्हें कि भाई इतनी अमेजिंग लगती है उन्हें कि कोई भी सेंसिबल इंसान ना इसे तुरंत मना कर दे। नेचुरली ये तीनों ने अपनी सारी सेविंग्स इसमें लगा दी। रिजल्ट, पैसा गायब, सपने गायब और तीनों फिर से कड़

के अब शुरू होती है असली सर्कस। इनफैक्ट इस मूवी का क्लाइमैक्स भी सर्कस में ही है। लोन शार्क्स पीछे, गैंगस्टर्स पीछे, डेंजरस डॉन पीछे और काफी सारा कंफ्यूजन। 25 दिन में पैसा डबल, यही सुनते अगर आपके दिमाग में अलार्म नहीं नॉस्टैल्जिया बजने लगे तो समझ लीजिए आंसर आपको मिल गया है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आंसर मिला है, जैसे जिग्नेश का मैसेज आया है यहाँ पर। देन आई हैव योर ये तमंग इनका नाम है आई थिंक सो, नेपाल से है ये। इनका भी मैसेज आया है, अबरार हसन का मैसेज आया है, सुनील कुमार का मैसेज आया और सभी ने, खयाम अख्तर का भी मैसेज अब आया है और सभी ने बिल्कुल ये कहा है कि आफरीन जो मूवी की बात कर रही हो तुम, ये है फिर हेरा फेरी। यस, देखिए हेरा फेरी मूवी पहचानना ना आसान है, लेकिन फिर हेरा फेरी पहचानना नहीं, ये मुश्किल है ना, क्योंकि ज्यादा लोगों ने ये मूवी देखी नहीं है। वेल, जहाँ हेरा फेरी की बात हो रही है, फिर हेरा फेरी की बात हो रही है, खबर तो ऐसी है कि हेरा फेरी फिर से आने वाली है। बहुत कंफ्यूजन था इसको लेकर भी, आएगी नहीं आएगी, फिर से आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल का वक्त ये बता रहा है कि भाई मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 8:51 और हिमेश रेशमिया की आवाज में अगला गाना सुनने का वक्त आ चला है। ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है और मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं एग्जैक्टली सुबह के 9. जबरदस्त गाने लाइनअप है. यू आर टू स्टे ट्यून्ड विद मी. दैट इज माइक सुनते का आफरीन ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

देखिए, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि बाहर का खाना खाने से ना पेट खराब हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, लेकिन ये चीज जो है कभी सोचा है कतर में अप्लाई नहीं करती? हाँ, यानी कतर जैसे देश में जहाँ हजारों लोग रोज रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, लेकिन कभी भी पेट खराब होने की शिकायत आपको सुनने में नहीं आएगी। इसी सवाल का जवाब छुपा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे में, जो आज कतर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आफरीन है आपके साथ। और आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के मौके पर कतर के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने उन फूड एस्टैब्लिशमेंट्स को ऑनर करने का फैसला किया है जो फूड एस्टैब्लिशमेंट क्लासिफिकेशन प्रोग्राम के अंडर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मतलब सिर्फ टेस्टी खाना बनाना काफी नहीं होता, हाइजीन, स्टोरेज स्टैंडर्ड्स, फूड हैंडलिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, इसी अवेयरनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिनिस्ट्री ने कैंपेन्स, वर्कशॉप्स और डिस्कशंस भी ऑर्गेनाइज किए हैं। फूड हैंडलर्स से लेकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक सबको ट्रेन किया जा रहा है ताकि फूड बॉर्न डिजीजेस को और इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं तब ये देखते हैं, गूगल रिव्यूज देखते हैं कि खाना कैसा है, पोर्शन साइज कैसी है, एम्बियंस इंस्टाग्राम वर्दी तो है ना, लेकिन दुनिया भर में हर साल लगभग 600 मिलियन लोग कंटामिनेटेड फूड की वजह से बीमार पड़ते हैं। सोचो, एक प्लेट खाना सिर्फ शेफ की क्रिएटिविटी नहीं होती है, उसके पीछे कंप्लीट इकोसिस्टम होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, स्टोरेज मैनेजमेंट सही से होना चाहिए, और ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ हमारे कतर में बिल्कुल सही से इंश्योर कर रही है। बिकॉज फूड सेफ्टी इज नॉट जस्ट अ रेगुलेशन, राइट, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ साइलेंट गार्डियन ऑफ आर पब्लिक हेल्थ। वेल, आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ का हेडक्वार्टर्स जो है हमारे कतर में वो ऑरेंज लाइट से इल्यूमिनेट किया जाएगा, जो ग्लोबली फूड सेफ्टी अवेयरनेस का सिंबल भी माना जाता है। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Grabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

और जब मेरी कतर के साथ पहली मुलाकात हुई थी अब से 12 साल पहले, तब ऐसा लगा था कि हाँ, रेगिस्तान में आ गई हूँ, यहाँ पर पेड़ पौधे कम है, क्योंकि मैं तो मुंबई से आई थी ना। बट 12 ईयर्स डाउन द लेन, कतर ने एक अपना लैंडस्केपिंग इस तरह से किया है कि यार, इट इज एब्सोल्यूटली स्टनिंग। ऐसा जैसे एक डेजर्ट जो धीरे धीरे ग्रीन कारपेट पहन रहा हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कतर ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून पर था, उसके मौके पर कुछ ऐसे नंबर्स शेयर किए हैं जो काफी आई ओपनिंग है। देखिए, 2025 में कतर के टोटल ग्रीन एरिया बढ़कर 21.9 मिलियन स्क्वायर मीटर्स तक पहुंच गया है, और हर रेसिडेंट के हिस्से में एवरेज तकरीबन 6.8 स्क्वायर मीटर्स ग्रीन स्पेस आता है। यस, और बात सिर्फ घास और पेड़ लगाने की नहीं है, कतर में पब्लिक पार्क्स जो है उसकी भी तादाद 2026 तक 156 पार्क्स तक पहुंचने की उम्मीद है। दैट्स अ ह्यूज नंबर फॉर सच अ स्मॉल कंट्री, है ना। यानी फ्यूचर में आपके इवनिंग वॉक्स, फैमिली पिकनिक्स और आउटडोर फिटनेस सेशंस के ऑप्शंस जो है ये और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। वेल, यहां पर एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि डेजर्ट क्लाइमेट में ग्रीनरी उगाना सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव नहीं होता है, मतलब इट इज एक्चुअली अ वेरी टीडियस एंड इनफैक्ट बहुत सोची समझी प्लानिंग होती है, एक रिसोर्स इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास होता है। कतर ने 1864 इको फ्रेंडली इरिगेशन सिस्टम्स फार्म्स तक पहुंचाए हैं ताकि पानी की हर बूंद को इंटेलिजेंटली यूज किया जा सकता है। व्हाट एन अमेजिंग प्लानिंग दिस इज, है ना। देखिए, जब हम अगली बार एस्पायर पार्क या ऑक्सीजन पार्क या किसी भी ग्रीन स्पेस में वॉक कर रहे हो ना, तो याद रखिएगा उसके पीछे सिर्फ लैंडस्केपिंग नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन और काफी साइंटिफिक प्लानिंग का कंट्रीब्यूशन है। वैसे एक लाइन में अगर मैं कहूं तो कतर सिर्फ अपनी स्काईलाइन को नहीं बल्कि अपनी ग्रीन लाइन को भी फ्यूचर रेडी रख रहा है। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
6: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन.
9: इट्स हॉट. मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: दोस्तों जानते हो, जिंदगी में कभी कभार कुछ चीजें अधूरी रह जाती है ना, उतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे देखा जाए तो हम सब चाहते हैं कि हर रिश्ता हैप्पी एंडिंग तक पहुंच जाए, हर मोहब्बत मुकम्मल हो जाए। लेकिन अजीब बात है, कई बार जो चीजें हमें पूरी मिल जाती है ना, उनकी कदर धीरे धीरे कम होते हुए आदत में बदल जाती है, और जो अधूरी रह जाती है वो याद बनकर दिल के किसी कोने में महफूज रह जाती है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो आज की शायरी बस इसी ख्याल पर है। तो अर्ज किया है, इश्क जिंदा रखना है तो उसे अधूरा रहने दो। इश्क जिंदा रखना है तो उसे अधूरा रहने दो, क्योंकि मुकम्मल हुए रिश्ते अक्सर गिले शिकवे शिकायतों में उलझकर ठंडी राख बनकर रह जाते हैं। क्या बात है।
2: सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना।
0: शायद इसीलिए कुछ मोहब्बतें किताबों में, नज्मों में और यादों में जिंदा रहती है, क्योंकि उन्हें रोज के हिसाब किताब, एक्सपेक्टेशंस और कंप्लेंट्स का बोझ नहीं उठाना पड़ता। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

देखो वो क्या है ना, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कोक स्टूडियो के गानों की, मतलब वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, आई जस्ट लव द कॉम्पोजिशंस यार. वैसे विशाल दलदानी और सोनू कक्कड़ की आवाज में दिस वॉज अ कोक स्टूडियो वर्जन मदारी. वेल माई फ्रेंड्स, आज का शो होता है ख़त्म. हाँ जी, बहुत अरसों बाद, लिटरली बहुत हफ्तों के बाद मैं यहाँ पर आई थी. आज मैंने सोचा बहुत बातें करूँगी, मतलब वो एक आदत होती है ना हर रोज़ की, कि भाई इतने सारे लोगों के साथ में बातें होती हैं, मुलाकातें तो बस ऑन एयर ही होती है, लेकिन हाँ जी सोशल मीडिया पर भी होती रहती है ना. तो बस आपका दिन आगे का अच्छा जाए यही उम्मीद करती हूँ, और कल की शुरुआत जो है आपके दिन की मेरे साथ ही होगी, यानी सिंपली आफरीन के साथ में सिंपल सी शुरुआत, बिल्कुल आपकी सुबह वाली आदत. तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ये गाना सुनिएगा और आपका दिन बेहतर जाए इसी उम्मीद के साथ. टाटा बाय बाय, सायोनारा. माइक से दिल तक आफरीन लेती है अलविदा, और मिर्ची इट्स हॉट.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा। Download कीजिए आज ही iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. No pierdo a la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: तो पिटोगे, बता रहा हूँ आपको।
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बिल्हाड़ी संधू की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। फिलहाल इतना बता दूं, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:09।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार देखो, बात इतनी है कि हमने जो सोचा, हमने जितनी उम्मीद की थी, शायद उससे भी बेहतर ये एक्सपीरियंस रहा। Hey, welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ। लेकिन सच कहूँ, एक्सपीरियंस की बात कुछ इस तरह से है कि अगर हम कल मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के ऑडिशंस की बात करें, भाई साहब क्या गजब की एंट्रीज, क्या बेहतरीन एक्सपीरियंस। दिल जो है ना, खुशी से गदगद एंड इस वक्त पूरी तरह से हवा में उड़ने वाला हो चुका है। विंग्स ऑफ दैट, ये तो एक खुशी की बात है। लेकिन दूसरी खुशी की बात ये भी है कि जिस बंदी का बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो बहुत अच्छे से मिशन को अकम्प्लिश करते हुए इस वक्त हमारे बीच आ चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट आफरीन। आफरीन, वेलकम बैक एंड बहुत बहुत मुबारकबाद।
2: थैंक यू सो मच अंशु। और अंशु ने बहुत प्यारी तरीके से वेलकम किया है मुझे फ्लावर्स देकर, एंड दीज आर सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच अंशु यार, सीरियसली, मतलब इतना वार्मली वेलकम करना, और यू आर मेकिंग इट फील के हाँ भाई है कुछ
0: नहीं यार,
2: मतलब अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: यार ऊपर वाले के दरबार से आना, मतलब उसे छूकर आना, उसे महसूस करके आना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते ना
2: अभी तक ऑनेस्टली ना वो ऐसा लग रहा है कि आई डोंट वांट टू गेट बैक टू रूटीन, मतलब वो आते अच्छा थे।
0: आई एम श्योर। और ये बहुत मुश्किल से होता है, जब तक उसका बुलावा ना आए तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। तुमने बहुत कुछ अच्छे काम किए, बहुत नेक कर्म किए, उसकी बदौलत ही वो कम्बल हुआ है, तो यार थोड़ा सा तो बनता है। सो नाउ वेलकम बैक टू जंगल आफरीन।
2: एंड इन फैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये मिर्ची मॉमी का जो तुम बता रही थी, आई मिस द ऑडिशंस, बट पिक्चर अभी बाकी है। मेरे अभी
0: अरे मेन, वो तो सिर्फ टीजर था, ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो साथ में मिलकर देखेंगे एंड बहुत गजब की अदाकारी भी हम सब मिलकर उसमें करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल आपको जंगल में लेकर चलते हैं। फाइनली इस जंगल पे आफरीन तो वापस आ गई हैं, आपको भी ले चल। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु, विद मी इज आफरीन।
1: मिर्ची, फ्रेश माल,
3: फुल ऑन मस्ती, मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मोंट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मोंट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: कुलदर्शन रावले रोचक कोहली की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज जॉनिता गांधी का साथ, फिल्म का नाम धड़क टू। एंड हाय, कुछ गाने जो होते हैं ना जो लिटरली आर म्यूजिक टू योर ईयर्स, तो ये गाना जो है वो जरूर है।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ चुकी हूँ एंड साथ में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग है जो आपको बताना चाहूंगी। देखिए, अगर इस हफ्ते को देखने की कोशिश करें तो ये कतर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत सारे बेहतरीन इवेंट्स हैं जिनका आगाज हो चुका है। कुल मिलाकर हाला समर ने आपको हाला यानी कि हेलो जो है वो बोली दिया है। यार पता है, पिछले 3-4 महीने की जर्नी को देखने की कोशिश करें, जब बहुत सारी चीजें स्टैग्नेंट हो चुकी थी, बहुत सारी चीजें यू नो मूवमेंट पे नहीं थी, तब रियलाइज हुआ यार जिन चीजों को हम बहुत बेसिक या ऑर्डिनरी समझते हैं, दरअसल वो हमारी लाइफ में कितनी ऑर्डिनरी है। ये बेहतरीन इवेंट्स जो आए दिन कतर में होते हैं, हमें लगता था भाई ये तो रोजमर्रा की बात है, आए दिन होते ही रहते हैं। अरे ना बाबा, जब एक बार इनमें हॉल्ट लगा ना, तब बस सब समझ में आया कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें सोशलाइज करने का एक मौका मिल रहा है, इन अच्छे एक्सपीरियंसेस को दिल से जीने का मौका मिल रहा है। से दैट, अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में आपको काफी इंटरेस्ट है, कल का कतर आज कैसे देखेगा ये समझना है, रियल स्टेट वर्ल्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उन सारे ऑर्गेनाइजेशन से सीखना है, समझना है, कुल मिलाकर फ्यूचर से मुलाकात प्रेजेंट में करना है, तो अगला इवेंट बस आपके लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट कतर 2026। 9th ऑफ जून से लेकर 11th ऑफ जून तक दो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पूरी धूम एंड रौनक जरूर रहेगी एंड मैं भी आपको जरूर मिलूंगी। अगर ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं, सो आई विल बी एमसीइंग दैट इवेंट एंड आई विल बी सीइंग यू देयर एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। कंसेक्यूटिवली फॉर द थर्ड टाइम आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन प्रोजेक्ट कतर। मुलाकात करते हैं वहां, बूथ लगा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बताना जरूर। 5000186, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज अकाशा का साथ, यानी अगला गाना, एंजॉय।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

लवली ट्राइकेटर्स इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इतना कह लूं कि कोई तो खूबसूरत सी याद है जिसे एक बार फिर से जीने की बारी आ ही चुकी है। हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपके जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ। एंड कोई बहुत ही खूबसूरत सी याद है जो एक बार फिर से आपको याद दिलाने आ गई हूँ। या देखिए, फिल्में जो है ना हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल अदा करती हैं। अगर मैं खासकर अपनी ज़िंदगी को देखने की कोशिश करूँ तो कुछ एक फिल्में ऐसी हैं जो मैं खासकर देखना पसंद करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा वो ना लो मोटिवेशन का फेस चल रहा है ना, डीमोटिवेशन, वो मेरे साथ आज तक कभी हुआ नहीं। तो अगर मुझे लगता है कि मैं लेस मोटिवेटेड हूँ, देर स्पेसिफिक फिल्म जिन्हें मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी मेरे अंदर आई जाती है। अगर लगता है कि एंटरटेनमेंट फन टाइम पास है, भाई कुछ स्पेसिफिक सेट है मेरी ज़िंदगी में मूवीज़ का जो मैं देखना पसंद करती हूँ ऑल एंड ऑल। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो चाहे आप किसी भी मूड में हो, किसी भी जोन में हो, अगर आप देखते हो ना तो ऑर्गेनिकली आपके चेहरे में मुस्कान आई जाती है। ना जिस फिल्म का म्यूजिक मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ वो हमारी जिंदगी में शायद ऐसा ही कोई काम करता है। ये फिल्म कौन सी है? अगर सारी बातें मैं बता दूं तो आप क्या करेंगे? वेल, इसका एक थीम म्यूजिक है जो मैं आपके बीच पेश करूंगी, आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड बस मुझे ये बताना है कि ये म्यूजिक है तो है किस फिल्म से। एंड अगर आपने करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर लिया तो फटाफट से मुझे भेज दीजिएगा 5000186 पर, 5000186 पर। विल गेट कनेक्टेड देयर एंड आई वुड रियली ट्रूली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। बॉलीवुड के फैन हो ना यार तो ये फिल्म ना पहचान पाओ ये नामुमकिन है।

हाई दिल में गिटार जो है कहीं ना कहीं बजने लगा है। आप बताइए ये धुन आपने सुनी तो आखिरकार किस फिल्म में सुनी? 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सुनो निगम की आवाज महालक्ष्मी अय्यर का साथ एंड अगला गाना एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। व्हाट डिड यू स्टील इन योर चाइल्डहुड?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो

0: फैस अब है देओल, अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज अ चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: खट खट,
3: हू देयर,
2: हू आर यू,
3: हू आर यू, हू,
4: अरे हू आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
3: खट खट, हू देयर,
5: only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

Well, Romy and Tanishq Bakshi ये खूबसूरत सी आवाज़ and what a power packed track it is from the film तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. बस एक बात बता दूँ, मेरा जो सवाल था वो उलझने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ उसमें कोई तो एलिमेंट है तो शायद आपको उलझाए जरूर. Hello, welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is Aajan Show with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ. एंड अब से कुछ देर पहले कोई तो आइकॉनिक सी धुन है जो मैंने आपके बीच पेश की थी. इतनी ज्यादा रिलेटेबल है कि अगर आप थोड़ा भी बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि इस आइकॉनिक धुन को आप ना पहचान पाएं कि ये है तो है किस फिल्म से. अब एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर से मैं ये धुन सुनाती हूँ. अभी भी अगर आपको लगे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये किस फिल्म से है तो मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर भेज देना 5000 1896 पर 5000 1896 एंड उसके बाद इससे जुड़ा हुआ कोई तो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपके बीच पेश करूंगी. अगर सुनते सुनते पहचाना कि ये है किस फिल्म से है तो 5000 1896 पर भेजें. मीनवाइल

0: आपको ये बता दूं बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वेल श्वेता थैंक यू सो वेरी मच. सबसे पहले एक बार फिर से यूसुफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद. नाजम थैंक यू सो मच. एंड और भी जितने लोगों ने रिप्लाई किया आपने जो कहा ये बिल्कुल सही. इस फिल्म की अगर हम बात करें तो एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म जो शायद बॉलीवुड को डिफाइन करती है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. पलट हाय पलट और पलट 1995 में रिलीज हुई ये फिल्म जो इश्क प्यार मोहब्बत का जिंदगी में हमारे लिए ना एक पर्याय बन चुकी थी. राज और सिमरन की इतनी खूबसूरत सी कहानी कि इसे ना पहचाने तो फिर क्या ही जाने. लेकिन चलिए इस वक्त आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ. डायरेक्टर प्रोड्यूसर शायद ये सारी बातें तो आप ज़रूर जानते होंगे. इस फिल्म में जिस धुन के जरिए इसे पहचान मिली उसमें कईयों को लगता है कि शाहरुख खान ने जिन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा हुआ था पकड़ा हुआ था एंड साथ में पूरी फिल्म की कहानी को डिफाइन की ये है तो क्या है. कईयों ने कहा यार ये वायलिन है, मुझे लगा ये गिटार है. लेकिन इतना बता दूं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना ही ये गिटार है और ना ही ये वायलिन है. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैंडोलिन. मैंडोलिन एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो गिटार से छोटा होता है लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा मेलोडियस होती है. और इसकी जो रूट्स हैं वो यूरोप से हैं लेकिन बॉलीवुड ने इसे पूरी तरह से अपनाया है. तो अब जब भी आप राज को देखें उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट देखें तो ये ना सोचिएगा भाई एक बार फिर से गिटार अच्छा बजा रहा है बच्चा या तो फिर वायलिन बजा रहा है. ये अगर कुछ है तो वो है मैंडोलिन. तो शायद ये धुन तो आपने बहुत अच्छी तरह से पहचान ली होगी लेकिन आदित्य चोपड़ा ने जिस इंस्ट्रूमेंट को इस फिल्म में अपनाया अगर वो आप ना पहचान पाए तो इसका नाम है मैंडोलिन और इसे ज़रूर याद रखना. म्यूजिक बाय जतिन ललित. अगला गाना लता मंगेशकर जी और कुमार सानू की आवाज़ में. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
1: तुझे

0: अच्छी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म धुरंधर 2. भाई आज भी सुनने में ना ये गाना मजा जरूर देता है. चलिए जी अब मजेदार बात जो है वो आप तक पहुंचा दी जाए.
1: मिर्ची अंशु
0: यार मुझे एक बात बताओ कि आपके पास छुट्टे हैं यानी कि 5-10 से 50 रुपया लोगे. अरे टेंशन ना लो यार, मांग नहीं ले रही हूँ, कुछ अपडेट दे रही हूँ. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आर्यांशु विद यू. वेल इस वक्त अगर आपके वॉलेट में कतरी रियाल के कुछ नोट्स हैं, खासकर मैं बात करूँ 5, 10 या 50 रियाल्स की, तो उसमें ध्यान देना बेहद जरूरी है क्योंकि कतर सेंट्रल बैंक ने जो 5th सीरीज के 5, 10 एंड 50 रियाल के बैंक नोट्स हैं उनमें कुछ ऑफिशियल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं इन लाइन विद द लॉज ऑफ द स्टेट ऑफ कतर. इन नोट्स पर आपको अब नजर आएंगे अपडेटेड डिटेल्स लाइक द ऑफिशियल स्टेट एम्ब्लम, अरबिक न्यूमरल्स एंड साथ ही रिवाइज्ड इशू डेट. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेंशन हो गई कि यार नोटबंदी तो कहीं नहीं हो रही. कहने का मतलब अगर हमारे पास पुराने 5, 10 या 50 रियाल के नोट हैं तो उनका क्या करें, अंशु को दे दो, कोई टेंशन नहीं है. अरे नहीं, अगर ये प्लान नहीं है सो दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इन सर्क्यूलेशन एंड विल बी एक्सेप्टेड नॉर्मली अक्रॉस कतर. सो नो नीड टू रश टू द बैंक टू एक्सचेंज योर नोट्स. लेकिन हाँ, अब नए नोट्स जो है मार्केट में निकल चुके हैं तो जब भी कोई आपको छुट्टी के तौर पे 5, 10 या 50 रियाल के नोट दे तो देखना क्या कुछ नया सा आपको उसमें स्टेट एम्ब्लम नजर आ रहे हैं, अरबिक न्यूमरल्स आ रहे हैं. अगर आ गया तो भैया कोई तो नयापन आपकी जिंदगी में शामिल हो ही चुका है. नहीं वैसे मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ नया खास आपकी लाइफ में लाती हूँ, नोट की खबर भी ले आई हूँ. क्या कहती पब्लिक, महमूद की आवाज, राघव चैतन्या का साथ. ये अगला ब्रांड न्यू ट्रैक बड़ा ही प्यारा यार, एंजॉय करें. बंदी का नाम अंशु.
2: मिर्ची फ्रेश माल.
3: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा, उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो मैं लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको ऊपर ले रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पललका याग्निक की नरेंद्र सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म तमाशा. बहुत ही ज्यादा सूदिंग सा गाना. लेकिन अब एक एक्साइटिंग सी खबर आप तक पहुंचा दी जाए.
1: मिर्ची अंशु.
0: हेलो, वेलकम बैक. यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. वैसे अगर सारी की सारी स्पाइस की बात करूँ तो ये किक ऑफ होने वाला 11th ऑफ जून को, जब हम एक बार फिर से विटनेस करेंगे फीफा वर्ल्ड कप. एंड दिस इज 2026 एडिशन. पहली बार हिस्ट्री में 48 टीम्स विल बैटल इट आउट अक्रॉस 104 मैचेस इन द यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको. एंड इसके साथ ही अगर कतर की जर्नी की बात करें, सो कतर एक बार फिर से ग्रैंड स्टेज में अपनी वापसी कर रहा है. But this time not as host but as a team that has qualified on merit for the very first time in its history. कतर की वर्ल्ड कप जर्नी जो है ये शुरू होगी 13th ऑफ जून को, जब कतर इज गोना बी टेकिंग ऑन स्विट्जरलैंड इन देयर ओपनिंग मैचेस. एंड इसके साथ ही ये सफर कंटिन्यूड रहेगा जब कनाडा एंड इसके अलावा बोस्निया एंड हर्जगोविना के साथ कतर का ग्रुप स्टेज में मैच होगा. अब यार, हम सारे के सारे इंडियंस के लिए ना ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा प्राउड है एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि अगर कतर के स्क्वाड को आप देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक बंदा है तहसीन मोहम्मद जमशीद, एक ऐसा टैलेंटेड यंग विंगर जिसकी फैमिली रूट्स केरला से हैं. एंड इस वक्त कतर नेशनल टीम को ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. बोलो भाई साहब, एक बात तो तय है कि कतर के ही साथ सही, लेकिन जब भारतीय वहां पे पहुंच गया तो दिल जो है ना इस वक्त खुशी से गदगद हो उठा है. चलिए जी, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं तो आपके हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप कतर की सबसे खूबसूरत याद आपके लिए कौन सी रही, ये बात मुझे जरूर बताना. 5000186 वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज़, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, बेहद ही खूबसूरत एंड हसीन सा गाना, लेकिन सुनाया किसने? हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ, लेकिन भाई साहब कोई तो है जो इस वक्त थोड़े कम खूबसूरत एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टेंशन ना लो, हम इतने अच्छे हैं कि हर चीज़ में, हर मौके में कहीं ना कहीं खूबसूरती जो है ना ढूंढ ही लेते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेंगे। जरा देखें किसकी बात कर रहे हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। एब्सोल्युटली सूरज चाचू की बात कर रही हूँ। पिछले दो दिनों से धूल की आंधी जो मेरे घर पे लेकर आया ना, अब इसकी कहानी मैं बयां करूँ तो क्या ही करूँ, लिटरली बता रही हूँ। कल मेरे घर पे ये हाल हुआ, मैंने अपनी व्हाइट कलर की शर्ट बाहर सुखाई थी, यू नो ओपन एरिया में पीछे की तरफ, एंड जब मैं अपनी शर्ट को लेकर आई ना अंदर, मुझे ये फील हुआ कि भैया नहीं, व्हाइट ऑफ व्हाइट नेचुरली कैसे बदलता है बिना दाग लगाए, ये सूरज चाचू ने मुझे जरूर बता दिया है। तो भैया पिछले दो दिनों से जो धूल की आंधी हमारी जिंदगी में बनी हुई ना, इससे बहुत ज्यादा सतर्क रहे। मौसम जो है और भी ज्यादा ट्रांजिशन के फेस में आ रहा है, गर्मी जो है ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही जुकाम की बात करें, सर्दी की बात करें, ये ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते आ रहा है। संभल के चलें, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी अराउंड 46-47, एक्सट्रीम गर्मी, मिनिमम अराउंड 34-35। एसी जो है पूरा टाइम वर्क करते रहे, इसलिए रिमोट को थप्पड़ लगाते रहे, एंड खुद को प्रॉपर तरह से चलाने के लिए पानी जो है अच्छी तरह से पीते रहे, कीप योरसेल्फ फुली हाइड्रेटेड। कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए ही काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। It's hot. Enjoy.
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future, call now 310-0813.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bolda, Bollywood Bolda,
1: only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: कौन है?
4: दवे.
5: दवे कौन?
4: The way you love me. आई हाय मर जावा.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

हेलो, वेलकम बैक. यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड इस वक्त अगर बेसब्र होकर किसी बात का इंतजार है तो बस यही कि आखिरकार ये छुट्टी कब मिलेगी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल लीव. यार पता है क्या, लाइफ जो है ना अलग अलग फेजेस में चलती है. एक वक्त था, एक दौर था, अगर बचपन के दिनों को देखने की कोशिश करूँ, हमारी जिंदगी में इतनी छुट्टियाँ होती थी कि जेन्युइनली जितनी बार हम स्कूल या कॉलेज नहीं जाते थे ना, उससे ज़्यादा तो हम छुट्टियाँ मनाते थे. इनफैक्ट पापा को मैंने काम पे कम, छुट्टियों पे ज़्यादा देखा है. एंड उन दिनों यार हमने उन छुट्टियों की इज्जत ही नहीं की. फाइनली कतर आने के बाद समझ में आया कि जो मुफ्त की मिली हुई छुट्टियाँ होती थी, आज ये जयंती कल वो जयंती एंड व्हाट ऑल, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है. अब जब ईद की छुट्टी आती है, कोई एक दिन का भी नेशनल हॉलीडे आता है, भाई अपरंपार खुशी किसे कहते हैं ना. ये बात आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है. लेकिन आप जब ये बात बहुत अच्छी तरह से बताए कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो उसके साथ ही हमारी जिंदगी में अगर कुछ दस्तक देने वाला है तो वो है एनुअल लीव. एंड महज 15 से 20 दिनों की बात है. आई गेस मैक्सिमम स्कूल्स में इट्स गोइंग टू बी 23rd of June, विच इज द लास्ट वर्किंग डे फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म. एंड इसके बाद 2 महीने की इत्मीनान वाली छुट्टी जो है वो शुरू होगी. वो बात अलग है, मम्मी की छुट्टियां खत्म होगी. तो इस बार अगर हॉलीडेज की बात करें, सो व्हाट आर योर प्लान्स, क्या क्या डिसाइड किया हुआ है? कहीं जाने वाले हैं, घर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं? बताओ यार. 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. मीनवाइल अगर आपका प्लान है कतर में ही रहना है, तो इतना बता दूं हाला समर इस कैंपेन के चलते कतर में इतने गजब के इवेंट्स होंगे कि इस बार का समर वेकेशन जैसा वेकेशन आपने कतर में कभी नहीं बिताया होगा. सो अगर कतर में रहने का प्लान है तो बहुत कुछ है जिसकी सारी डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी. अगर बाहर जा रहे हैं तो आते वक्त मिठाई का डब्बा लाना मत भूलना. जस्ट सिंग अनिरुद्ध रविचंदेर की आवाज़. एंड अगला पावर पैक ट्रैक आपके लिए, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

Well, मैं कसम की आवाज सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज. वैसे मिलेगी मिलेगी कभी तो मिलेगी, मुझे इसी बात का इंतजार है. मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची

0: गुड़ किन खालिया
1: स्वीटी,
0: गुड़ वाली चाह किन पीती
1: स्वीटी,
0: बुआ जी दा नाड़ा किन खिचया
1: हाँ?
0: खिच के मार किन सीटी ओ छंडो।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: वेल खान साहब की खूबसूरत सी आवाज़ और लवली ट्रैक इट इज़, ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त आपको सुना दिया, लेकिन जिस खबर का आपको बेसब्री से इंतजार होता है जरा उसकी भी बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ. एंड इसके साथ ही ये भी बता दूँ कि आज का पैसा बोलता है तो क्या कमाल बोलता है. यार शायद ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब अपने घर से दूर इस दूसरे घर में हम रहते हैं ना, तब जिंदगी में अगर छोटी सी भी कुछ इंक्रीमेंट वाली खुशी मिल जाए ना यार, तो अपरंपार खुशी बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली हमारी लाइफ में शामिल हो जाती है. एंड एक्सचेंज का जो रेट है ये बड़ा रोल अदा करता है यार. शायद कईयों के लिए बहुत नॉर्मल बात हो, लेकिन जो लोग घर पैसे भेजते हैं, सेविंग्स की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, ये बात तय है कि उन सारे लोगों के लिए बात जाना काफ़ी मायने रखती है. लेकिन पता है क्या, मेरे पापा अक्सर मुझसे एक बात कहा करते थे, जहाँ तक ये ज़िंदगी में ज़रूरी है कि हम पाई पाई बचाने की कोशिश करें, वहीं उतना ही ये भी ज़रूरी है कि अपने कमाए हुए पैसों को ज़रूरत के हिसाब से और अपने शौक के हिसाब से कभी कभी खर्च भी किया जाए, क्योंकि पैसे खर्च करना भी जो है ना ये कला है और हर किसी के बस की बात नहीं. लेकिन देखें, अगर बचत के खाते को आज खोल रहे हैं तो आज का पैसा क्या कहता है. अजी इंडिया वालों, अगर आज ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आईपी मनी में 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.09. एंड इसके साथ ही अगर पाकिस्तान रुपीस की बात करूं तो भैया ये आंकड़ा आज पहुंच चुका है 76.76 पर. अगर आज हम देखने की कोशिश करें बांग्लादेशी टाका का क्या हाल है, तो भैया ये कहते हैं हम हैं 33.70 पर. एंड इसके साथ ही जितने भी लोग नेपाल से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपकी तो चांदी चांदी है. अगर आज के एक्सचेंज रेट को देखने की कोशिश करें सो इट इज़ 41.84. एंड लंका वालों यानी कि श्रीलंका से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जरा उनका क्या हाल चाल है ये भी देख लें. श्रीलंकन रुपीस को अगर देखूं मैं तो इट इज 92.14. बड़ा छलांग जो है लंकन रुपए ने लगाई दिया है. बढ़िया जी, अच्छे एक्सचेंज रेट को एंजॉय करें. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escapa la puscaba la sacabana.
2: ¡Rápala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Aló?
4: मैडम डिस्टर्बेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टर्बेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टर्बेंस अभी आ रही है?
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे
4: हैं? मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
4: है मोबाइल पे
3: और क्या?
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टर्बेंस आ रही है। दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब?
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स
7: हॉट। आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
8: उससे भी ज्यादा।
7: लॉटरी लग गई?
8: उससे भी बड़ा।
7: तो फिर बताओ।
8: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
6: 8-13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
9: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
6: FM।

0: और बस शायद इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी है जो ये काम अक्सर हमारी जिंदगी में आए दिन बस कर ही देती है। हमारी मम्मी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मिठास और साथ में स्पाइस इनका कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे लगाया जाए। यार बस माँ को सेलिब्रेट करते हुए इस वक्त मिर्ची मॉमी अवार्ड्स की शुरुआत फिर से हो चुकी है। आगाज इतना कमाल है तो जरा सोचे कि अंजाम क्या गजब होगा। टॉप 16 हमें मिल चुके हैं एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। लेकिन इतना बता दूं, इस वक्त स्पाइस एंड मिठास दोनों इस इवेंट में अगर कोई ऐड कर रहा है तो वो है हमारा रेस्टोरेंट पार्टनर यानी कि चस्का रेस्टोरेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रेविंग में चाइनीज फूड है, नॉर्थ इंडियन है या टिपिकल मुंबई कर वाला अंदाज आपको चाहिए, वो फ्लेवर चाहिए, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से अगर आपको कहीं पहुंचना है तो वो है चस्का रेस्टोरेंट, जो कि लोकेटेड है इज़दान ओएसिस में। भाई स्वाद जो है वो तो जबरदस्त है और प्राइस जो है उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। तो फटाफट से इस इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं और आप और हम मिलकर चलेंगे चस्का लेने एट चस्का रेस्टोरेंट। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा, download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी। हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशन।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

की आवाज़ में लवली ट्राइकटर्स, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब सबसे कमाल की बात भी इस वक्त आपके बीच पेश हो ही जाए। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत काम हमारी लाइफ में किसी ने किया तो वो है सारी की सारी मॉमीज ने। यस, सैटरडे यानी कि कल के दिन अगर कुछ ऑर्गेनाइज एंड होस्ट किया गया सो दैट वॉज द ऑडिशन राउंड ऑफ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 एट द मैग्निफिसेंट अबू सिद्रा मॉल। एंड सबसे खास बात यह है जब इतनी सारी खूबसूरत मॉमीज एक साथ आईं उनमें से टॉप 16 को निकालना इट वॉज अ टीडियस जॉब, बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एंड बिलीव मी फिफ्थ एडिशन की अगर एंट्रीज को हम देखने की कोशिश करें तो जेन्युइनली अब तक की सबसे कंपेटिटिव एंट्रीज हमको देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली जजेस की मदद से हमारे बीच टॉप 16 जो है वो पहुंच चुके हैं ऑडिशन राउंड के बाद, जो कि ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना चुके हैं। अब देखना है कि सीजन 5 जो अब तक का सबसे बड़ा सीजन होने वाला है उसमें वो कौन सी मामी है, वो कौन सी मामी है जो सुपर मामी से मिर्ची मामी का सफर जो है वो तय करने वाली है, किसके सर पे वो क्राउन जो है वो ताज जो है सजेगा, कौन अपने साथ ढेर सारी यादों का पिटारा लेकर जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है, विनर चाहे कोई भी मामी हो, हर एक माँ जो है हर घर की और हर बच्चे की जिंदगी की रानी जरूर होती है। तो चलिए इसकी शुरुआत अब हम करते हैं। मिर्ची मॉमी का सफर हो चुका है शुरू, सारे अपडेट्स के लिए बस बने रहिए, टिक्के सुनते रहिए कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, कनेक्ट विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स मिर्ची 1 कतर एंड मिर्ची अंशु। एंजॉय नेक्स्ट ट्रैक बंजारी की आवाज में, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who there?
5: Agarkar.
6: Agarkar who?
5: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
6: Cut, cut. Who there?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस। iPay वॉलेट का भरोसा, डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।
1: लेट्स डू दैट।

0: स्कूल टाइम में दिस टाइम यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ माय लाइफ.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, ये time, बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का time हुआ करता था यार. और हम इस time में ना बचपन में नानी के घर पर ऐश किया करते थे. And you know, I realized this कि मुझे पिछले साल तक भी गर्मियां बहुत पसंद थी. And then I questioned myself कि ऐसा क्यों? कि गर्मियों में आम के अलावा ऐसा क्या खास है कि one would love this मौसम? और जवाब में अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि ये वो मौसम है जब हम गर्मियों की छुट्टियां enjoy किया करते थे. और तब से लेकर आज तक, just for the sake of nostalgia, I still liked summers until 2023, जब मेरी opinion बदली और मैं अपने आप से ये कह सकती हूँ कि अब मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है. चॉइसेस बदली हैं तो साथ ही साथ छुट्टियां भी तो बदली हैं यार. बस बड़े होने के साइड इफेक्ट्स के साथ अब गर्मियों की छुट्टियां ऑफिस जैसी जगह पर नहीं मिलती, और एक डेढ़ महीने की छुट्टियां तो डेफिनेटली एक साथ नहीं मिलती यार. तो आज क्या बोलते हो, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गर्मियों की छुट्टियों में पार्क करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: दिल

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
3: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
3: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
3: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
3: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
3: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ लेती,
3: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो बोल दो बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ये पगला
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: पूरे साल ना मैं जब अपने घर पे रहा करती थी तो मैं बड़ी कॉशियस रहती थी कि ये मेरा तौलिया है, ये मेरा कंघा है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ये सब भूल जाया करती थी मैं।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों में ये ट्विस्ट लाइफ में आता था जहां एज अ किड आई यूज्ड टू गो इन माय शेयरिंग एंड केयरिंग जोन, क्योंकि हम इतने सारे कजिन्स एक साथ होते थे कि मेरा चल ही नहीं सकता था बॉस। खाना शेयर करना हो, बेड शेयर करना हो, या चीजें शेयर करनी हो, हम लोग ना सुबह तो एक बार नहाते ही थे, लेकिन एक बार शाम को फिर से नहाते थे और सब एक के बाद एक नहाया करते थे। और शाम को ना मैं ऊपर अपने रूम में जाने से बचने के लिए नीचे आंगन वाले बाथरूम में ही नहा लिया करती थी। और इस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि टॉवल जो है वो मुझे अपने रूम से लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कजिन का टॉवल शेयर कर लिया करती थी यार। एंड तब ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता था कि हाइजीन है, ओ ये मेरा टॉवल नहीं है। और इम्यूनिटी के साथ साथ ना यूनिटी भी बढ़ जाया करती थी। एक प्लेट में से एक साथ खाना खाना, सब कुछ एक साथ करना। नो वंडर हम वो जनरेशन है जिन्हें हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन टाइप मूवीज ना बहुत पसंद आती है। Because we could connect with these films really well, hai ki nahi? Chalo ji, with this coming up the next track, you stay tuned with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi, it's hot.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
2: और एड ब्रेक भी. मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार.
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: गोला बर्फ याद है आपको?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और कोई इसे चुस्की बुलाता है तो कोई गोला बर्फ। बुलाए हम इसे कुछ भी, लेकिन इसका स्वाद हर जगह सेम है, आइस एंड सिरप। मुझे याद है हम लोग दिन में जब सब बड़े सो जाया करते थे ना, तब एक डिश लेकर मुल्ला जी की दुकान पर जाया करते थे। और मुल्ला जी की दुकान एक छोटी सी दुकान थी, जो दुकान कम और खिड़की ज्यादा लगती थी, जहाँ उनकी बर्फ घिसने वाली लकड़ी की और लोहे की एक मैनुअल मशीन हुआ करती थी, जिस पर वो बर्फ घिसते और फिर हमारे चॉइस के रंग का शरबत उस पर डालकर गोला बर्फ बनाकर हमें दिया करते थे। हाय, आपसे बात करते करते ना ऑरेंज वाला जो गोला बर्फ था ना, उसका स्वाद आ गया। आपका कौन सा फेवरेट कलर था? क्योंकि बचपन में हम फ्लेवर कम और कलर ज्यादा बोला करते थे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: खट खट,
3: कौन है?
2: अज्जू।
3: अज्जू कौन?
2: अज्जू ना आए बाल माँ, सावन बीता जाए। होए।
3: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: पावर्ड बाय आईपी, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस, आईपी वॉलेट का भरोसा, डाउनलोड कीजिए आज ही आईपी, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसेस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशन.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपको ये आवाज सुनकर कुछ याद आया? पहले अगर नहीं आया तो ये आवाज आपको जिब्रिश लग रही होगी, लेकिन आगे जो मैं बताने जा रही हूँ ना, आप डेफिनेटली सारे डॉट्स कनेक्ट करके याद कर पाओगे कि अच्छा, ये तो वो बात कर रही है सारा।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये आवाज पिंगू की है। याद है पिंगू? DD1 पर ये छोटा सा पेंगुइन अपनी मस्ती और शरारतों से हमें कितना हंसाता था, दिल खुशी से झूम उठता था। बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ एक्सप्रेशंस और मजेदार साउंड्स के साथ ना, पिंगू ने हम सबका दिल जीत लिया था। पिंगू के साथ उसकी छोटी बहन, उसके मम्मी पापा और वो क्यूट से आइसबर्ग हाउसेस, सब कुछ कितना प्यारा था ना। मुझे ना आज भी पिंगू वाला एनिमेशन बड़ा प्यारा लगता है यार। क्या आपको याद है जब पिंगू अपनी छोटी बहन को परेशान करता था, तब वो अपने पापा से डांट भी खाता था। वो मासूमियत और वो मजाक से भरे हुए पल आज भी हमारे बचपन की प्यारी सी यादों में से है। और इस शो के एनिमेशन का मुझे वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जहाँ पर इन पेंगुइन्स का टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाने वाला सीन होता था। सब खाना खाने लगते थे और ये सारी की सारी फैमिली इतनी क्यूटली टेबल पर बैठकर फिश खा रहे होते थे। आज भी मैंने जब ये एनिमेशन शो देखा ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज का एहसास हुआ और वो था सुकून। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो।
2: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम लोग जसपिंदर नरूला द सिंगर के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। और मैं तो उनको जब किसी गाने में देखा करती थी तो खोस ही जाया करती थी, क्योंकि उनके लंबे काले घने बाल और ऊपर से उनकी आवाज का कमाल, ओए होए। लेकिन वेरी लेस डू वी नो अबाउट हर फादर, सरदार केसर सिंह नरूला जी, जो कि खुद एक सिंगर थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And yes, जसपिंदर नरूला के फादर सरदार केसर सिंह नरूला जी, he was a singer and a very good singer। और जसपिंदर नरूला को जो ये गिफ्ट ऑफ वॉइस मिला है वो अपने फादर से ही मिला है, उन्होंने ही इन्हें ट्रेन किया है। लेकिन there was this one day in his life जब उनकी आवाज all of a sudden चली गई और उसके बाद वो गा ही नहीं पाए। Well, जसपिंदर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि ये उनके साथ तब हुआ जब उनके एक शागिर्द ने उन्हें कुछ खाने के लिए लाकर दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इसे खाइए, क्योंकि उनकी तबीयत या आवाज में कुछ तो नासाजी थी, कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये खाइए और अगले दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक होना तो दूर की बात, उनकी जो आवाज थी वो तो ऐसी गई कि कभी वो वापस से उस तरीके से गाना गा ही नहीं पाए जिस तरीके से वो पहले गा चुके थे और उनकी आवाज में इतने गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। And yes, ये दुनिया is a mixed bag of people, जहां पर अच्छे लोग तो है ही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की अच्छाई या दूसरों का अच्छा होना कभी पसंद नहीं आता, तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा जाती है। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन।
5: It's hot.
6: यहाँ

वाह, हाय शर्मीली वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me।
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us।
0: ताजमहल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट.
1: 89.6, 89.6.
2: It's hot.

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: सेक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: गरम मसाला का ये जो गाना है ना, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसकी खबर भी कुछ गरम मसाले से कम नहीं है।
2: मिर्ची, Thugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, गरम गरम मसाले वाली खबर ये है कि this गाना from the film गरम मसाला is not an original. Well, the deal is कि ये गाना actually inspired है from an Egyptian song जो कि 2001 में रिलीज हुआ था, वाला अला बल हो, which was sung by Amrut Diab, who is an Egyptian singer and composer, and the song is this one. ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले इस गाने के कंपोजर को ढूंढने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स या तो वो प्रीतम दा होते या तो वो अनु मलिक, एंड इस केस में इट इज प्रीतम दा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कौन है?
5: स्टेन।
4: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खट खट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है सोनू सूद जो है, he has been saving lives since 1997.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अब आप सोचोगे कि हाँ क्या बात करियो यार सारा, सोनू सूद का दिल इतना बड़ा है कि ये इंडस्ट्री में आने से पहले से ये सारे काम कर रहे थे. तो वेल एक्चुअली वो जो जिंदगियां बचाने का काम कर रहे थे ना, वो नागराज बनकर कर रहे थे. हाँ, आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि मुझे भी नहीं था और हमने ये रियलाइज भी नहीं किया कि नागराज कॉमिक का एक टेलीविजन एड आया करता था और उस टेलीविजन एड में हरे कपड़े पहने हुए जो नागराज बंधु थे ना, दैट वॉज सोनू सूद. रिवाइज करने के लिए आपको एक बार एड सुनाती हूँ, क्या पता आपको याद आ जाए.
3: नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आपका तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नार.
1: अभी कुछ याद आया? Well, इस एड में वो जो हीरो हुआ करते थे वो अपने सोनू सूद ही हुआ करते थे यार. अगर आपको ये बात अच्छे से देखनी है और फिर बोलना है कि अरे हाँ यार, तो YouTube पे जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा ये एड. अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Trápala! Murga, murga. La fiesta la murga. ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही हैं?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले तो नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्भे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्भे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है? दिमाग खराब,
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंप्लेंट
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
8: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने आज वर्ल्ड साइकिल डे पर साइकिल से रिलेटेड कई सारी बातें करी हैं और अब मैं आपको उस एक्टर के बारे में बताती हूँ जो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन के लिए कार में नहीं साइकिल पर पहुंचे थे।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ तो नहीं, क्योंकि सलमान खान तो शौकिया तौर पर साइकिल चलाते हैं, लेकिन जिन एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो मजबूरी में साइकिल चलाकर अवार्ड रिसीव करने के लिए गए थे, और ये है आशुतोष राणा, जिन्हें अपना पहला फिल्म फेयर मिलने वाला था फॉर द मूवी दुश्मन, लेकिन वो तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया करते थे। एंड फॉर द अवार्ड फंक्शन ही चोज टू राइड अ बाइसिकल, एंड इन एन इंटरव्यू ही रिवील कि एट दैट टाइम ही एंड हिज नाउ वाइफ रेणुका शाहने वर डेटिंग ईच अदर, और रेणुका ने उन्हें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करके सरप्राइज दिया था, एंड आफ्टर दैट आशुतोष ने रेणुका को एक कार गिफ्ट करी। इसे कहते हैं कपल गोल्स। तो चलो इसी बात पर आशुतोष की फिल्म संघर्ष से हो जाए अगला गाना। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मुझे

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Cassette ke side B ka teesra gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: कोयला मूवी में जो म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इस म्यूजिक में ना एक कसक है जो लिटरली दिल के तार छू जाती है। एंड आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि जितना मैं कोयला के म्यूजिक को फील करती हूँ ना, उतने मेरे पास शायद अल्फाज नहीं होंगे टू एक्सप्लेन इट। बट दिस सॉन्ग

वैसे तो इस गाने की सिचुएशन इन द फिल्म इज डिफरेंट, लेकिन आज की अगर बात करें ना तो आई फील कि दिस सॉन्ग इज फॉर दोज टू पीपल जो एक बड़े से शहर में जाकर अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग अक्सर इतनी भीड़ में खुद को तन्हा ही पाते हैं, और जब दो तन्हा दिल मिलते हैं तो वो दोनों के अकेलेपन को समझते हैं और वहीं कनेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि यही है वो तन्हाई जो दोनों को पास ले आई। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरा ख्याल करना है तो शो के बाद इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Khat khat.
4: Kaun hai?
3: Ishant.
4: Ishant kaun?
3: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
4: Khat khat, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: माशुका गाना खत्म हुआ और आपके साथ कौन आ गया? मस्त मौला गौरव बड़े दिनों के बाद लौटा है और इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत जरूरी काम से इंडिया गया था एंड घर से लौटा हूँ, तो इतना ही कहूंगा कि हम थोड़े दिन इंडिया क्या चले गए, सूरज चाचू तुम तो जलने लग गए हैं जी, लौट के आए, गर्मी ऐसी पड़ रही है पूछो मत। शाम के 4:05 के करीब का समय, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12 ही बज रहे।
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: हाँ जी, तो चलती का नाम है गाड़ी और मेरे जाने के बाद ईशा ने संभाली थी ये जिम्मेदारी, लेकिन अब लौट के आ गया हूँ और बातें बताऊंगा ढेर सारी, जिसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ने कौन कौन सी कंपनी को लाइसेंस दिया है जो राइड हेयरिंग कंपनीज है कतर में, कतर सेंट्रल बैंक ने क्या अनाउंस किया है, वो कौन से चेंजेस हैं, इसके अलावा और क्या खास होने वाला है आने वाले टाइम में, ये सब कुछ आपको यहीं पता लगेगा। तो बस कान लगाओ, मिर्ची पर बैठे रहो और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लो, भैया हम आए हैं गर्मी बढ़ाएं एंड साथ ही साथ गानों के एंटरटेनमेंट अपने साथ लाएं। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vietvala burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं मैं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पल रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

नारियों का जश्न था कल मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के ऑडिशन राउंड में। मस्त मौला गौरव, आपको बता दें कि हमने मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के लिए कल शुरुआत कर दी एंड कल ऑडिशन राउंड था जहां पर टॉप 15 लेडीज का नाम हम सबके पास आ चुका है। यस, प्रीति पुरोहित, दिव्या, नेहा, प्रियंका, प्रेमलता, जर्मीना, शालू, युक्ति, दीपा, उर्मिमाला, सरला, स्वाति, जैसी, शारुल एंड शिल्पा, ये वो नाम है जो अब टॉप 15 के हकदार बन चुके हैं। और मिर्ची मोमी अवार्ड्स की तैयारियों के लिए अब इनके पास अच्छा खासा समय है एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरह का कल सेलिब्रेशन था, वहां पर कंपटीशन था ही नहीं, हर लेडीज एक दूसरे को चीयर कर रही थी अबू सुद्रा मॉल में। एंड इतना ही कहूंगा, मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 इज फुल सेट नाउ, टॉप 15 के साथ अब हम फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। एंड ऐसे में मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने उन सारे स्पॉन्सर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं। यस, आई पे जो कि मिर्ची मोमी अवार्ड्स के हमारे मेन स्पॉन्सर है, उसके अलावा हम रेस्टो पार्टनर चस्का को थैंक यू ना चाहते हैं, आईवेयर पार्टनर अल्फा हद ऑप्टिक्स एंड पिज्जा पार्टनर पापा जोन्स के अलावा हाइजीन पार्टनर हाइजीन इंटेलिजेंट प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे शुगर फ्री पार्टनर है ट्रॉपिकाना स्लिम, ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी एंड वर्चुअल मीडिया पार्टनर रिहाब एंड इसके अलावा रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना। हम सब साथ आए हैं वेन्यू पार्टनर अबू सुद्रा मॉल जहां पर यह ऑडिशन राउंड कंप्लीट हुआ एंड 15 लेडीज जो अब कंप्लीट करेंगी मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के उस क्राउन के लिए जिसका इंतजार वो पूरे पिछले एक सालों से करती आ रही है। सो ऑल द बेस्ट टू टॉप 15 एंड द रिमेनिंग वंस। यार कोई बात नहीं, आप फिर भी हमारे ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनिएगा एज एन ऑडियंस। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: भाई और बहनों, आपके 5, 10, 50 के नोट आज से अरे नए मेकओवर के साथ आ रहे हैं। ये सब आपको बता दें, कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किए हैं 5th सीरीज ऑफ बैंक नोट में कुछ चेंजेस जो आपको नजर आएंगे।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, इन नोटों को एक छोटा सा मेकओवर, नया लुक दिया गया है। इसमें आपको नया स्टेट एम्बलम दिखेगा, अरबिक न्यूमरल्स दिखने वाले हैं और न्यू इशू डेट जो है वो भी आपको बिल्कुल दिखाई देगी। लुक थोड़ा नया और स्टाइलिश हुआ, इसलिए घबराइएगा मत कि अगर आपको कोई नया वाला नोट दे दे तो आप इस चक्कर में पड़ जाए, यार ये तो कतरी करेंसी नहीं, कुछ और दे रहा है, नकली नोट कौन दे रहा है। असल में ये न्यू लुक लॉन्च होने जा रहा है और अगर आपके कतर में आपके हाथ में नए नोट पाते हो ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये करेंसी बिल्कुल लीगल होगी। एंड 5, 10, 50 के ये 5th सीरीज के नए बैंक नोट अब जल्द ही मार्केट में आपके हाथों में आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए। एंड आने वाले टाइम में ये चेंजेस और भी अदर करेंसी डिनोमिनेशन पर लगेगी, यानी कि जो बड़े नोट्स हैं 200-500 के उस पर भी ये आने वाला है। तैयार रहिए, अब ये नए लुक वाले नए करारे नोट वैसे भी हमें अच्छी फीलिंग देंगे। काश जल्दी से ये बैंक नोट मिले और हम अपने दोस्तों भौकाल बनाए, मेरे पास सबसे पहले आ गया था, यही तो करते हैं बचपन से आज तक। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: Restaurant partner Chaska Restaurant. Chinese, Mumbai ho ya North Indian ka craze. Budget mein chahiye tasty dish. To chaliye Chaska Restaurant. Jo hai Esdan Oasis mein. Swaad bhi zabardast aur price bhi mast.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. Har pal ko banaye khas Sky Jewelry ke saath. Elegant designs, dazzling collections. Aur har budget ke liye perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry. Design for generations.
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा.
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा.
5: तो फिर बताओ.
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है. ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम.
0: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच. पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: बहुत जल्दी रंग बदल लेते हो सूरज चाचू। अभी 20 दिन पहले ही तो निकला था मैं यहाँ से ये सोच कर कि मौसम बेईमान उतना भी नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लौटते ही सब कुछ जला जला सा लग रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: बात करें तो भैया मैक्सिमम तापमान जो है भले ही 43-44 तक पहुंच रहा है, 43-44 में भी 50 वाली फीलिंग दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिन का मैक्सिमम आज 43 है एंड दिन का मिनिमम अराउंड 31। बड़ी बात यह है कि हवाओं की रफ्तार इसमें और जबरदस्त गर्मी एंड लू के थपेड़ों वाली फीलिंग दे रही है। 21 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास चलती दिन में हवाएं, ये हमें बता रही है कि मौसम तो अभी और गर्मी बढ़ाएगा एंड आने वाले टाइम में ह्यूमिडिटी का भी पारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अपने पानी पीने के कोटे को बढ़ाए रहिए, को रखे हाइड्रेट एंड कीप लिसनिंग मिर्ची, क्योंकि हम यहां पर आपको रखते हैं अप टू डेट। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: ओ वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Jassi.
5: Jassi? Kaun si wali Jassi?
4: Jassi who has come, auntie ji?
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हाय हाय हाय आईपी सिंह जोनिता गांधी की आवाज में चुनरी चुनरी गाना सुनाया एंड ये गाने को वाइब फील करते ही ना मैं अचानक से सलमान खान और सुष्मिता सेन तक पहुंच जाता हूं। मिर्ची घड़ी में शाम के 5:04 के करीब
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड ऐसे में जब मस्त बोलो गौरव आपके साथ है तो बस इतना ही कहना चाहता हूं देवी और सजनों इस घंटे हम खेलते हैं पहचान कौन में आती है एक आवाज आपको बतानी होती है कि आवाज किसकी है और आज की आवाज जरा ध्यान से सुनिए।
2: खुद को खोया तो क्या पाया। That's been my standard belief in life that if you lose yourself then you won nothing. Be that plastic surgery, be that man in my
0: life. बस be that plastic surgery, be that man in my life. एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और बताइए ये किसकी आवाज है।
2: खुद को खोया तो क्या पाया। That's been my standard belief in life that if you lose yourself then you won nothing. Be that plastic surgery, be that man in my life, be that relationships, be that a married man.
0: बस इतने में तो आप समझ ही जाएंगे। मस्मोला गौरव यही पूछ रहा है कि अगर आप हैं इनके फैन तो आप इनकी आवाज से इनको पहचान जाएंगे एंड हिंट दूंगा मैं अगली बार अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे। यार फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि जबरदस्त अदाकारा है एंड देश का नाम भी इन्होंने ऊपर ले जाकर नाम कमाया है। 5000 1896 5000 1896 पर अपना जवाब जरूर भेजिए कि आवाज जो मैंने सुनाई वो किसकी आवाज है।
2: खुद को खोया तो क्या पाया। That's been my standard belief in life that if you lose yourself then you won nothing. Be that plastic surgery.
0: 5000 1896 पर मस्मोल गौरव आपके वॉइस नोट का इंतजार कर रहा है। हाय गौरव मैं ये बोल रहा हूँ या ये बोल रही हूँ और इसका जवाब है ये। फिलहाल करण औजला अपने बॉयफ्रेंड गाने के साथ मिर्ची पर आ गए। वेलकम है जी।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirci, murga.
2: हेलो
3: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख
3: से। अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
2: साहब जी को गलत बात है। साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
3: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
3: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ऐसा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
3: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
3: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा? मैंने तो बस सूचित करना था, करना मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
3: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
3: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1, it's hot।
6: उड़ाड़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: जो पाँव के ऊपर पाँव को रखे और बैठे,
1: वो चट्टान जिस पे वो बैठे सिंहासन बन जाए, जो सिंहासन वो पलवर में वो चट्टान बन जाए,
0: वो जो हाथ के ऊपर हाथ रखे

0: उदित नारायण अलखयाग ने टिप टिप का ये एक और वर्जन जो आप यहाँ सुनते हैं। लेकिन जैसे ही बच जाते हैं शाम के 5, हम और आप मिलकर खेलते हैं जनाब पहचान कौन, जहाँ मैं एक आवाज सुनाता हूँ और पूछता हूँ बताइए ये आवाज किसकी है।
1: खुद को खोया तो क्या पाया। That's been my standard belief in life that if you lose yourself then you won nothing. Be that plastic surgery, be that men in my life, be that relationships, be that a
0: bad man. बस बस बस तो बताइए ये किसकी आवाज है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं।
2: हेलो गुड इवनिंग गौरव भाई, दिस इज मुस्तफा सामान को फ्रॉम न्यू सलार। ये आवाज है सुष्मिता सेन। थैंक यू सो मच मिट्टी इज हॉट।
3: ये सुष्मिता सेन का आवाज है जी।
0: ओके
4: विनोद, ये आवाज सुष्मिता सेन की लग रही है।
0: ओके
5: हेलो हेलो मस्त मौला गौरव, दिस इज बाल कृष्ण उपाने।
0: यस बाल भाई बताएं।
5: और ये आवाज जो अभी आपने बजाया था ये आवाज है सुष्मिता सेन का।
0: ओके
6: हाय गौरव, मैं रिजवान बोल रहा हूँ, मेरा नाम है, मैं कटक से कटक में हूँ इंडिया से। हमको लगता है ये जो है हीरोइन है सुष्मिता सिंह नाम है, हमको लगता है ये वही है।
7: हाय आरजे गौरव, दिस इज लाइशनर शेट्टी एंड द ऑडियो क्लिप इज फॉर सुष्मिता सेन।
0: 100% सही जवाब। इसके अलावा यूसुफ भाई, अतुल, रोहन एंड करिश्मा के अलावा संगीता एंड जारा, ये लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। यस, ये आवाज सुष्मिता सेन की है एंड ज्यादातर लोगों ने एकदम सही बताया। यार सुष्मिता की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। मैं फंसता पर आप नहीं, इसका मतलब सर आप असली फैन है। चलो फिलहाल श्रेया घोषाल, वैशाली मादे मिलके जरा पिंगा कपूरी करा दो। इट्स हॉट।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion. All at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: हाइजीन पार्टनर हाइजीन. फ्रॉम क्लीन स्किन टू हेल्दी लाइफ. एक्सपीरियंस टोटल प्रोटेक्शन विद हाइजीन सैनिटाइजर, वेट वाइप्स एंड बॉडी वॉश. हाइजीन प्योर प्रोटेक्शन.
3: Sugar free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. Har pal ko banaye khas Sky Jewelry ke saath. Elegant designs, dazzling collections. Aur har budget ke liye perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry. Design for generations.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

अब देखिए ये इनके पीछे पीछे जाए ना जाए, लेकिन अगर आप किसी मॉल से बाहर निकलते हैं या पब्लिक प्लेस से जहां कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, वहां से टैक्सी ड्राइवर आपके पीछे पीछे जरूर आता है, हेलो हेलो टैक्सी टैक्सी, ये वालों से नहीं जाना है, असली वालों की लिस्ट आ गई है। ये सब आपको बता दें, कतर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस कर दी है उन लाइसेंस राइड हेलिंग कंपनीज के नाम जो हमारे लिए लैंड ट्रांसपोर्ट कतर में लीगल तरीके से करते हैं। यस, मिनिस्ट्री ने जिस राइड हेलिंग कंपनीज को अप्रूव किया है, यानी कि वो जो सर्विसेज आपको आकर टैक्सी देते हैं, उनमें उबर, बद्रगो, आबिर, करवा, राइड, ईस्गो एंड वेयर टू गो, याद रखिए यही वो लाइसेंस्ड अप्रूव कंपनीज हैं जो हमारे कतर में ऑपरेट कर रही हैं। अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें, आई रिपीट, उबर, बद्रगो, आबिर, करवा, राइड, ईस्गो एंड वेयर टू गो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने क्लियर किया है इसके अलावा अगर कोई भी गाड़ी चला रहा है इलीगल तरीके से तो उन पे लीगल एक्शन होगा, और अगर वो व्हीकल्स जो अकेले वैसे यू नो लाइट मार के कह रहे हेलो टैक्सी टैक्सी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर वो स्टेट ऑफ कतर के लॉ को तोड़ेंगे। ऐसे लोगों से बचिए एंड कोशिश यही कीजिए जो लाइसेंस टैक्सी है आपके लिए वो सर्विसेज को ही आप यूज करें, इससे आपकी सेफ्टी भी और मजबूत होती है। प्लस अगर इस दौरान सफर में आपका कुछ खो जाता है ना तो ये लोग जिम्मेदारी के साथ लौटाते हैं, अब अगले वालों का पता नहीं भैया। 89.6 मिर्ची 1 पर आप क्यूट है, लेकिन डिसीजन और स्मार्ट वाले लिया करिए, मिर्ची इज हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: खटखट,
3: हू दैट?
2: ज़ाहिर।
3: ज़ाहिर, ज़ाहिर हूँ।
2: ज़ाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
3: खटखट, हू दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.

आबाद और बर्बाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बढ़ाओ, मस्त मौला गौरव, ताकि घर अच्छे रेट पे पैसे भेज पाओ और अच्छे रेट मिलते कहाँ है। हाँ जी, लखपति बनने का मौका है आपके पास। अगर आपके पास है हजारों में कतरी रियाल तो उसे लाखों बनाइए, क्योंकि इंडियन रुपीस मिलने वाले हैं 26.09 रुपए 1 कतरी रियाल के बदले 26.09 INR। वही 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस, ताकि घर अच्छे रेट पे पैसे भेज पाओ और अच्छे रेट मिलते कहाँ है। हाँ जी, लखपति बनने का मौका है आपके पास। अगर आपके पास है हजारों में कतरी रियाल तो उसे लाखों बनाइए, क्योंकि इंडियन रुपीस मिलने वाले हैं 26.09 रुपए 1 कतरी रियाल के बदले 26.

0: बैरन बंजारे ये गाना गा दिया और हमने यहाँ सुना दिया। मिर्ची गली में टाइम हो गया शाम के 6:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल मस्मोला गौरव आपके साथ है। देवी और सजनों, एक नाम जो इस बार इंडियन पैसा वाला लीग बोले तो फ्रेंचाइज लीग में कमाल किया, वो था वन एंड ओनली राजस्थान रॉयल्स से हमारे वैभव सूर्यवंशी। और अब उनको ध्यान में रखते हुए इंडियन टीम की कॉल आ गई। भाई यंगेस्ट प्लेयर एवर हो गया हमारा वैभव। एंड इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से वैभव को ये कॉल आया है, इंग्लैंड आयरलैंड में वो जाने वाले हैं एंड सबसे कम उम्र में डेब्यू का वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर वो इनमें सीरीज में किसी मैच में उतरे तो समझ लीजिए ये रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि अब तक का ये रिकॉर्ड हमारे भारत के 5 खिलाड़ियों में से सबसे पहले शफारी वर्मा के साथ था, जो कि 15 साल 239 डेज की थी जब साउथ अफ्रीका 2019 में डेब्यू किया था। और अगर हम मेंस टीम की बात करें तो यस, यहां पर सचिन तेंदुलकर 16 साल 205 दिनों में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर पाए थे। अगर मौका सही लगा तो वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करेंगे 15 साल 71वें दिन पर। क्या ये होने जा रहा है? इंतजार कीजिए, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कमाल होगा। लेकिन आपको बताना ये है कि वैभव 21 स्टेट से आते हैं इंडिया के। आइए देखिए भाई, उनके स्टेट को लेकर बहुत सारा माहौल बना हुआ है कि फला है, डायलॉग है। क्या आप वो डायलॉग बता सकते हैं जो उनके स्टेट से जुड़ा हुआ है? 5000196 पर वैभव सूर्यवंशी भारत के किस राज्य से आते हैं, किस स्टेट से, एंड क्या वहां पर कहावत कही गई है उनके लिए? 89.6 मिर्ची 1 पर कोहली की वो लाइन मैं बताऊंगा अगर आप नहीं बता पाए। 5000196 पर वॉइस नोट अपना जवाब भेजिए एंड कीप लिस्टिंग मिर्ची। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहे। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1st September 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ रहे हैं ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर,
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पकड़ा।
7: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
8: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: नकश अजीज के बाद में जबरा फैन मैं भी आपका हो गया हूँ, नाम है मेरा मस्त मौला गौरव। लेकिन इस सीजन जब हम फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग की बात करें तो इंडियन पाकिस्तान लीग में हम फैन बने वैभव सूर्यवंशी के। कमाल का प्ले किया लड़के ने, एक एक रोल, एक एक किरदार, एक एक छक्कों से इतिहास रचा और अब इतिहास रचने जा रहे हैं जब उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हो गया है। और अगर वो डेब्यू करते हैं तो वो सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बनने का मौका अपने हाथ रखते हैं। मैंने यही पूछा कि वो किस राज्य से, यानी किस स्टेट्स ऑफ यू नो स्टेट से आते हैं, इंडिया का वो कौन सा राज्य जहां से आते हैं और वहां की क्या कहावत है। और लिसनर्स भारी है भाई।
1: हाय गौरव। हाय। वैभव सूर्यवंशी बिहार समस्तीपुर बिहार से है।
0: यस।
1: और कहावत है एक बिहारी सब पर भारी। दिस इज स्मिता विद यू।
2: हेलो, कैसे हैं जी?
0: जी जी,
2: वैभव सूर्यवंशी बिहार से आते हैं।
0: जी जी,
2: उसका जो वो आती है एक बिहारी सौ पे भारी, ऐसे है सर।
0: बिल्कुल सही, और यही बात कही विराट कोहली ने, एक बिहारी सब पर भारी भैया। एंड अब ये बिहारी आने वाला है टीम इंडिया में, एंड कितना भारी पड़ेगा आने वाले टाइम में बॉलर्स पर, इसके लिए इंतजार कीजिए जब आयरलैंड इंग्लैंड के टूर पर हम इन्हें देखेंगे। 89.6 मिर्ची वन, वैभव सूर्यवंशी, ऑल द बेस्ट, इट्स हॉट।
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

विशाल मिश्रा हंसिका पारिक की आवाज में ये गाना मैंने आपको यहाँ सुना दिया। यस, एंड मैं अपनी बातें सुनाता हूँ और आपकी काम की बातें आपके कानों तक लाता हूँ। जैसे कि अभी एक पॉजिटिव अपडेट सामने आई है, एंड ये है कतर में विला और पैलेसेस की बिल्डिंग रूल्स में 20 से ज्यादा नए अमेंडमेंट्स की। क्या आप जानते हैं कि अब कतर में जो रेसिडेंट विलाज हैं उनकी मैक्सिमम हाइट 16 मीटर तक ही हो सकती है और पैलेस के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी अपडेट हैं जिसमें मेज़ेन फ्लोर की परमिशन दी गई है, उसमें कैसे बनाना है, क्या करना है, और जो बहुत सारे कतरी फैमिलीज हैं जिनकी फैमिली ग्रो कर रही है उनके लिए क्या क्या नए रूल्स हैं, ये सब कुछ एक्सपेंशन के अंदर आ गया है। यानी कि अब कतर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा कर रहा है बल्कि उससे मिलते जुलते रूल्स, घर में रहने वालों की सेफ्टी, हबीबी, ये सब पर ध्यान दिया जा रहा है। वल्ला ये हमारे फ्यूचर की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में ये विलाज एंड ये रेसिडेंसेस जब बनेंगे तो इनकी हाइट के साथ साथ हमारी जेब टाइट है इस बात को भी समझा जाएगा और सस्ते रेंट वाले विला बने, हम यही चाहते हैं। 89.6 मिर्ची वन, एक विला लेने का अपना सपना पूरा हो, यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: कटे।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा, मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खटखट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: क्या भिंडी को भी आने वाले टाइम में लॉकर्स में रखा जाएगा?
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे क्योंकि ऐसा कमाल और धमाल जब हुआ है तो मामला तो बनेगा ही। 7200 रुपए प्रति किलो वाली भिंडी।
1: क्या कह रहे हो?
0: अरे वही कह रहे हैं जो यहाँ मुझे पता लगा है। यस, एक इंडियन NRI जो कि US में रहते हैं, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर से एक वीडियो ऑनलाइन वायरल कर दिया है जिसमें इन्होंने भिंडी का दाम दिखाया है 7200 पर किलोग्राम। यस, और ये देखकर लोगों ने दांतों तले भिंडिया नहीं उंगलियां ही चबाई है। यस, लोग ये कह रहे हैं कि ये रेट हो कैसे सकता है क्योंकि हमारे वहां 7200 रुपए किलो में मिल जाती है लेकिन विदेशों में थोड़ी महंगी होती है। पर सर जिस हिसाब से ये भिंडी है ना, मुझे तो लग रहा है इस भिंडी को खरीद के लॉकर में रख दो, क्या पता आने वाले टाइम में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न ये भिंडी दे दे। वैसे भिंडी के दाम में थोड़े नखरे हो सकते हैं क्योंकि इसका नाम के आगे लेडी जो लग जाता है। 89.6 मिर्ची वन पर 7200 रुपए की भिंडी खरीद के खाई नहीं जाती दोस्त, लॉकर में रखी जाती है ताकि आने वाले टाइम में ये आपको बढ़ा के पैसे दे। सड़ गई तो बात अलग है। मिर्ची।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्राई।

0: लेकिन मैच पर कोई पत्थर न चलाए और वहाँ मैच अच्छे संपन्न हो जाए, अब कतर ने जिम्मेदारी संभाल लिया है। और शाम के 7:09 पर मैं ये बातें कर रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हिज एक्सीलेंसी शेख खलीफा बिन हमद खलीफा अल थानी, यस, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, कमांडर ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज लेखविया, जो कि चेयरमैन भी है सिक्योरिटी कमेटी के, उन्होंने एक मीटिंग की है कतर के उस कंटिजेंट के साथ जो जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सिक्योरिटी में। यस, हम आपको बता दें कि कतर की एडवांस सिक्योरिटी एक्सपर्टीज के चलते ये मौका मिला है हमारे कतर के लेखविया पुलिस को, जो जाकर आने वाले टाइम में फीफा वर्ल्ड कप जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको में होने वाला है, वहां अपनी सर्विसेज दे पाए एंड वर्ल्ड कप सकुशल संपन्न हो पाए, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड फीफा वर्ल्ड कप 2022 दुनिया के लिए एक नजीर है, एक एग्जांपल है कि कैसे कतर ने बेहतरीन तरीके से एक फैमिली फ्रेंडली टूर्नामेंट कराया था और अब उसी का एक एडवांटेज मिला है जहां कतर के लेखविया कंटिजेंट को वहां बुलाया गया है ताकि वर्ल्ड कप सक्सेसफुली कराया जा सके। सो कतर के इस कंटिजेंट के लिए भी जोरदार तालियां। उम्मीद है जैसा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 हमने यहां पर सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ पूरा किया था, आप वहां भी करा कर आएंगे एंड कतर का नाम फुटबॉल की फील्ड के साथ साथ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में भी उज्जवल एंड बेहतरीन होगा। 89.6 मिर्ची वन पर प्राउड मोमेंट फॉर ऑल कतरी पीपल, रेसिडेंट एंड सिटीजन, मस्त मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची इट्स हॉट। कहते हैं ना, जिम्मेदारी मिले तो मन से पूरी करो तो लोग आपको और मौके देते हैं और कतर ने वही किया एंड आप फीफा खुद कह रहा है भैया कतर से बुला लो सिक्योरिटी, तभी जो है बेहतरीन टूर्नामेंट हो पाएगा। तो इसके लिए प्राउड फील कीजिए भैया।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. La bala. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
2: ¿Aló?
3: मैडम डिस्टर्बेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टर्बेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टर्बेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: है मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है? दिमाग खराब,
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: नारियों का जश्न था कल मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के ऑडिशन राउंड में। मस्त मौला गौरव, आपको बता दें कि हमने मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के लिए कल शुरुआत कर दी एंड कल ऑडिशन राउंड था जहां पर टॉप 15 लेडीज का नाम हम सबके पास आ चुका है। यस, प्रीति पुरोहित, दिव्या, नेहा, प्रियंका, प्रेमलता, जर्मीना, शालू, युक्ति, दीपा, उर्मिमाला, सरला, स्वाति, जैसी, शारुल एंड शिल्पा, ये वो नाम है जो अब टॉप 15 के हकदार बन चुके हैं। और मिर्ची मोमी अवार्ड्स की तैयारियों के लिए अब इनके पास अच्छा खासा समय है एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरह का कल सेलिब्रेशन था वहां पर कंपटीशन था ही नहीं, हर लेडीज एक दूसरे को चीयर कर रही थी अबू सदरा मॉल में। एंड इतना ही कहूंगा, मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 इज फुल सेट नाउ, टॉप 15 के साथ अब हम फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। एंड ऐसे में मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने उन सारे स्पॉन्सर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं। यस, आई पे जो कि मिर्ची मोमी अवार्ड्स के हमारे मेन स्पॉन्सर है, उसके अलावा हम रेस्टो पार्टनर चस्का को थैंक यू ना चाहते हैं, आईवेयर पार्टनर अल्फा हद ऑप्टिक्स एंड पिज्जा पार्टनर पापा जोन्स के अलावा हाइजीन पार्टनर हाइजीन इंटेलिजेंट प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे शुगर फ्री पार्टनर है ट्रॉपिकाना स्लिम, ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी एंड वर्चुअल मीडिया पार्टनर रिहाब एंड इसके अलावा रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना। हम सब साथ आए हैं वेन्यू पार्टनर अबू सदरा मॉल जहां पर ये ऑडिशन राउंड कंप्लीट हुआ एंड 15 लेडीज जो अब कंप्लीट करेंगी मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के क्राउन के लिए जिसका इंतजार वो पूरे पिछले एक सालों से करती आ रही है। सो ऑल दी बेस्ट टू टॉप 15 एंड द रिमेनिंग वंस, यार कोई बात नहीं, आप फिर भी हमारे ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनिएगा एज एन ऑडियंस। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भाई और बहनों, आपके 5, 10, 50 के नोट आज से, अरे नए मेकओवर के साथ आ रहे हैं। ये सब आपको बता दें, कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किए हैं 5th सीरीज ऑफ बैंक नोट में कुछ चेंजेस जो आपको नजर आएंगे।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, इन नोटों को एक छोटा सा मेकओवर, नया लुक दिया गया है। इसमें आपको नया स्टेट एम्बलम दिखेगा, अरबिक न्यूमरल्स दिखने वाले हैं और न्यू इशू डेट जो है वो भी आपको बिल्कुल दिखाई देगी। लुक थोड़ा नया और स्टाइलिश हुआ है, इसलिए घबराइएगा मत कि अगर आपको कोई नया वाला नोट दे दे तो आप इस चक्कर में पड़ जाए, मां यार ये तो कतरी करेंसी नहीं, कुछ और दे रहा है, नकली नोट कौन दे रहा है। असल में ये न्यू लुक लॉन्च होने जा रहा है और अगर आपके कतर में आपके हाथ में नए नोट पाते हो ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये करेंसी बिल्कुल लीगल होगी। एंड 5, 10, 50 के ये 5th सीरीज के नए बैंक नोट अब जल्द ही मार्केट में आपके हाथों में आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए। आने वाले टाइम में ये चेंजेस और भी अदर करेंसी डेनोमिनेशन पर लगेगी, यानी कि जो बड़े नोट्स हैं 200-500 के उस पर भी ये आने वाला है। तैयार रहिए, अब ये नए लुक वाले नए करारे नोट वैसे भी हमें अच्छी फीलिंग देंगे। काश जल्दी से ये बैंक नोट मिले और हम अपने दोस्तों में भौकाल बनाएं, मेरे पास सबसे पहले आ गया था, यही तो करते हैं बचपन से आज तक। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: गुलाबो जरा एसी चला दो।
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: इस मौसम में बिना एसी के बड़ा ही मुश्किल है जीवन, और यहाँ पर तो अब हमारा बिना एसी के लगता नहीं मन। ऐसे में देवी और सज्जन, आप अपनी गाड़ी का ध्यान जरूर दें, क्योंकि गाड़ी का एसी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम इस दुख भरी कहानी से ही सुबह सुबह ऑफिस आए, हमारी गाड़ी का एसी अचानक से धोखा दे गया। हम घर से लौटे, हमने सोचा गाड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी, लेकिन एसी का कंप्रेसर धोखा दे के हमारे अंदर का बढ़ा दिया ब्लड प्रेशर। लेकिन आप अपनी गाड़ी का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर गाड़ी ने आपका साथ छोड़ा ना, तो जितना दर्द एक्स ने दिया उससे ज्यादा आपकी गाड़ी 10 मिनट में दे जाएगी। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि गाड़ी के साथ साथ आप अपनी बॉडी का बहुत ध्यान देंगे और जमकर पानी पियेंगे और जितना हो सके खुले में कम घूमेंगे, एंड काम पड़ने पर ही दोपहर में धूप में कहीं बाहर निकलेंगे। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार की शानदार महफिल में आपके लिए ढेर सारी बातें लेकर। तब तक ले हबीबी, मस्सलामा मिर्ची, इट्स हॉट हरारा कतई।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Ghana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath on Mirchi.
5: Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai to set the pop clock for the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Is bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, mujhe follow karo. Mera handle is @RJKanika. Hafte ke top 10 hottest pop gaane hain. Hamara 90s 2000s ka iconic indie pop gaana hai. Some special shout outs and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki with Gaana number 10. Adnan Sami ki composition, unhi ki awaaz, Mahima Bharadwaj ke lyrics. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: नंबर 10.

0: दिस सॉन्ग स्क्रीम्स दैट पंजाबी आ गए हुए दिलजीत दोसांझ की आवाज उन्हीं की कंपोजिशन. गाने का नाम है डीलर. 11 हफ्तों से पंजाबी इस काउंटडाउन पे रेजिडेंट बन चुके हैं. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है. मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था. डोंट वरी, शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे. अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स बाय मीका सिंह. नाम ऐसा है, सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है. आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है. ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे. चाहे उनके फिल्मों के गाने हो, नॉन फिल्म गाने हो, मीका सिंह इज अ कैरेक्टर इन हिज ओन राइट. सोचने वाली बात है, ऑल आर्टिस्ट वॉन्ट दैट आइडेंटिफिकेशन, राइट? कितनी बार होता है दैट हम कोई गाना चलाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है, उसने गाया है, किसका गाना है. बट विद मीका सिंह देयर इज नेवर अ स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन. उनकी आवाज ही उनके गानों की टेक अवे फैक्टर है. पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था, आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है. कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेक अवे फैक्टर होता है. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार फिर से सुनाती हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है.

0: @RJ Karik on Instagram पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, मीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। Now back to the countdown, अगले वाला गाना इस दया द रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिस्निंग टू गाना ID Top 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर

0: Gaana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana sakka bana Ya bana Murga murga Nabeed wala murga Mirchi murga
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे अब उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आ गए, वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले आ रहा हूँ।
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Gaana Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
10: Number 7.

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanaga. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanaga. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाई और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं फॉर आवर सेगमेंट विच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में 2 बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

Mika ka gana called Something Something. If you're from the 2000s ka generation, you know the impact of this song. Before Mika Singh became voice of Hindi film songs ka anthem, jaise ki Mauja Hi Mauja, Subah Hone Na De from Desi Boys, Aankh Mare from Simba, matlab unki awaaz hum sunte hain aur wo party wali awaaz yaad aati hai. 440 volt from Sultan. Mika Singh owns all these songs. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेस का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनकी एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन इट. I challenge you, ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. The biggest party voice of our generation, मीका की आवाज में, this is something something, a 2006 indie pop song playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है RJ करेका. Enjoy. Something.

0: गॉड मीका सिंह योर वॉइस इज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म, मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है कुछ, मतलब नहीं मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे, दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रेकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना विच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर, हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अक्सर जब हम बैठते हैं म्यूजिक मूवीज के बारे में बात करते हैं, हर जनरेशन के कुछ ऐसे गार्ड्स होते हैं, मॉरल गार्ड बोलते हैं उनको, जो ये बातें शुरू कर देते हैं कि यार आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है, आज की फिल्मों में वो बात नहीं है। 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी। अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना, वो कंप्लेन करते रहेंगे। व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना। मे बी रोमांस, सैपी, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक। मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना, तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग। आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है। इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाई निशान सरकार। We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फेमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है। एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू। What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने folk music को कि यार ये तो उस जमाने का music है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है। उन्होंने उससे ही आज की language में बात करके दिखाई। गाना बहुत energetic है लेकिन over the top नहीं है। It's extremely danceable, groovable, लेकिन dance के लिए नहीं बना है। And chorus में एक ऐसी quality है that एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है। And that's what makes independent Indian pop music so exciting. हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड ऊबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

इस गाने को एक बार सुन के काम ही नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJKaringa ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक्ड इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा। हम हमसे आगे शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर। पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal. Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Butt.
6: Butt? Are butt who?
5: Butt. Bike bahut awaaz karti hai.
6: Cut, cut. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi.
0: It's hot.
8: Indie Top 10
0: Kanika ke saath on Mirchi.
9: Number 2.

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबी ना।
0: मीका सिंह द अदर रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंपर चोरे ने दे दिया बम्पर।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वो मिट्टा रोर का शीशा। मेश रेशमिया इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड शराब दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा वॉज ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
5: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में।
0: And the numero uno song of the week is yet again Baron by Banjare. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। This हरियाणवी song is changing how music works, how it's blurring the boundaries between language and genres. Baron is playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
1: Number 1.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
4: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
4: मीसम नाम है।
0: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
4: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
4: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
0: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
4: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
4: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
0: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
4: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
4: कॉल सेंटर
6: सर, इतना गुस्सा मत होइए सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया।

0: था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
0: नहीं सर मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे बता रहा हूँ आपको।
0: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
4: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा, सुरेश वाडकर साहब ने 1976 में एक सिंगिंग कंपटीशन जीता, उसके बाद उनका करियर शुरू हुआ। इस कंपटीशन में वन ऑफ द जजेस थे जयदेव, और जयदेव साहब ने उनको उनका ब्रेक थ्रू गाना दिया। सुनिए इस गाने के बारे में, एक बार सुरेश वाडकर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: एक दिन सुबह सुबह फोन आया जयदेव जी का कि सुरेश आ जाओ जरा मिलो, बहुत सुंदर एक गजल बनी है, फिल्म बन रही है गमन, मेरे लिए तुमको गाना है। तो उन्होंने सिखाया गाना और फर्स्ट टेक उसका ओके हो गया। जब मैंने सुना तो थोड़ा दुखी हो गया, वो बैकग्राउंड में गाना था और तो वो साउंड भी दूर से आ रही है क्योंकि वो सिचुएशन वैसी थी, मगर मैं दुखी हो गया था। तो मैंने पापा जी कहता था प्यार से जयदेव जी को, तो मैं पापा जी एक और टेक ले लेते हैं, तो उन्होंने क्यों मुझे जैसा चाहिए वैसा आ गया है। तो घर आके मैं एकदम रोने लग गया। तो गुरु जी ने एक क्वेश्चन किया कि भाई जयदेव जी को कैसे लगा, बोले मैंने वो तो बहुत खुश थे, बस हो गया बस बोलते हैं। अब देखिए मुझे ये मालूम नहीं था कि उस गाने का क्या रंग बनेगा बाद में, बहुत पॉपुलर हो गया गाना और लोग जानने लगे सुरेश वाडकर कोई नया लड़का आया है।
0: तो सुन लेते हैं खूबसूरत सी गजल पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आपको पता है इस गाने का भी रीमेक बन चुका है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, मैं खामोशी के इस आइकॉनिक सॉन्ग की बात कर रही हूँ। हेमंत कुमार जी ने जो गाया है, उन्होंने ही कंपोज किया है, लिखा है गुलजार साहब ने। तो ये रीमेक बना था 1992 में, जब दूरदर्शन पे तलाश नाम का एक सीरियल आया था जी। उसका टाइटल ट्रैक जो लिखा था योगेश ने और गाया था सुरेश वाडकर ने, सुनिए जी।

है ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट, लेकिन एक्चुअली कॉपी नहीं था क्योंकि प्रॉपर क्रेडिट्स दिए गए थे हेमंदा को। ये सीरियल डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
2: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू देयर?
5: हुम आर यू?
6: हुम आर यू हू?
5: अरे हुम आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
6: खट खट, हू देयर?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans. With Charu. Only on

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बच चुके हैं 10 मिर्ची पे, शो का नाम पुरानी जीन्स।

मैंने ना लाइफ में छोटे होते टीवी पर याराना फिल्म पहले देखी और कालिया फिल्म बाद में देखी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ऐसा जब हुआ तो मुझे बड़ा शॉक लगा, मेरा दिल टूट गया, क्योंकि याराना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और अमजद खान साहब ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कालिया में अमजद खान साहब प्लेज अ विलन। और फिर मैंने अपने घर में किसी से पूछा भी था, मम्मा से या किसी से, कि भाई मम्मा ये तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। छोटे होते वाला भोलापन, मासूमियत कितनी अच्छी होती है यार, कुछ पता ही नहीं होता है। फिर बड़े होके समझ में आता है कि ये तो रियल लोग हैं ही नहीं, ये जो रिश्ते निभा रहे हैं फिल्मों में ये भी रियल नहीं है, सब नाटक है। चलिए इस नाटक का मतलब ये कालिया फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: हैं, मोबाइल पे
3: और क्या?
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद।
3: डिस्टरबेंस आ रही है।
5: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
8: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
9: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
10: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: शोले फिल्म को लेकर जावेद अख्तर साहब को, जिन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर फिल्म लिखी थी, उनको एक पछतावा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए क्या पछतावा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: I still regret that one of my dialogue was cut. You know, when they give challenge to Gabbar and Gabbar says, बहुत दिनों बाद गब्बर को कोई ऐसा आदमी मिला है जो इतनी बराबरी से बात कर सके, अब आएगा मजा। इसके आगे there was one line, he says, ऐसा मलिया मेट करूंगा, ऐसा मलिया मेट करूंगा कि पूरे रामगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी। तो मुझे ये अभी, एक तो मलिया मेट इज सो मच लाइक गब्बर्स वोकैबुलरी, एंड बिसाइड दैट टोटल डिस्ट्रक्शन जो है, इसका डिस्क्रिप्शन जो एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी वाज अ नाइस थॉट, सॉरी फॉर द इमॉडेस्टी। अरे यार, दिस डायलॉग शुड हैव बीन देयर, इट वाज अ नाइस लाइन।
0: क्या बात है बताओ, इसी बात पे गब्बर के अड्डे पे चलते हैं, मतलब इस गाने से। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
2: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद जानू ओनली।

0: आपको पता है वैजयंती माला जी की मदर वसुंधरा देवी जी भी तमिल फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वैजयंती माला जी की परवरिश उनके नाना नानी के घर में हुई और उनकी नानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने। सुनिए इस बारे में वैजयंती माला जी ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हमारे जो फैमिली काफी कंजर्वेटिव फैमिली, और तो मेरी नानी जी बहुत चाहती थी कि मैं अच्छी तरह से एजुकेशन मुझे मिल जाए और फिर कुछ उस फील्ड में मैं कुछ बन जाऊं। मगर डांस में बहुत ही वो लगन बहुत रहा, तो वो हमेशा चाहती थी कि मैं अच्छी से एक बहुत बढ़िया डांसर बनूं। और फिल्मों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, एकदम हो गया, इट जस्ट हैपेंड।
0: और क्लासिकल डांस के साथ साथ उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था।
1: दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज़ माय ग्रैंडमदर ऑलवेज सेड दैट म्यूजिक एंड डांस वेंट हैंड इन हैंड, देयर कुड बी नो डांस विदाउट म्यूजिक। सो आई हैड टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक, द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक।
0: वेल, उनकी ये निपुणता, उनकी ये ब्रिलियंस आप उनके डांस में देख सकते हैं। कोई भी डांस उनका उठा लीजिए, इट इज परफेक्ट, जैसे कि इस गाने में जो हम अभी सुनने वाले हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
2: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
1: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
2: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।

0: फिरोज खान साहब एक चीज बड़ी अच्छी करते थे, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे तो वो काफी चीजें बहुत कमाल करते थे, लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी करते थे वो यंग टैलेंट को चांस देना। सुनिए, शक्ति कपूर साहब ने एक बार फिरोज खान साहब से अपनी पहली मुलाकात के बारे में एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मेरी पुरानी गाड़ी, मैं लिंकिंग रोड से अपनी गाड़ी में टाउन के लिए जा रहा हूँ और एक पीछे से मर्सिडीज आती है, कुमारी मेरी गाड़ी ठोक दी यार, जेब में 35,000 रुपए नहीं है, इस गाड़ी को ठीक कैसे कराऊंगा यार। मैं निकला, मैंने कहा, और उस टाइम 21-22 साल की उम्र, खून आपका गरम, जवानी भरपूर, और मैंने कहा इसको तो पूरा पैसा वसूल करूंगा, नहीं तो मर्सिडीज ही ले जाऊंगा, ये गाड़ी इसको दे दूंगा, मर्सिडीज लेके घर जाऊंगा। उस गाड़ी में से कौन निकलता है? सुपरस्टार फिरोज खान। मैं फिरोज खान को देखता हूँ, 6 फुट 1 इंच, लाल गाल उस आदमी के, झट से पूरा क्राउड फिरोज खान। मैं सब कुछ भूल गया, मैं कहा सर, माय नेम इज सुनील कपूर, सर, एंड आई वांट टू वर्क इन फिल्म सर, एंड आई फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर, मुझे रोल दो सर, मैं भूल गया। एंड ही सेड, क्या यू ब्लडी यू नो यू डैमेज माय कार मैन, एंड ओके चीयर्स। गाड़ी में बैठे चले गए, पूरा क्राउड उनको देख रहा है।
0: क्या बात है भाई, गाड़ी में बैठ के वो चले तो गए, लेकिन देखिए आप भूले नहीं वो शक्ति कपूर को, जांबाज फिल्म में इतना इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने उनको दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. नो रियली, आई मीन इट. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.

ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज की फेयरवेल पार्टी नहीं रही है जिसमें ये गाना नहीं चला है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1988 की कयामत से कयामत तक का ये सुपर डुपर से भी ऊपर वाला गाना। और इस गाने ने सिर्फ आमिर खान को ही सेंसेशन नहीं बना दिया था बल्कि दिलीप ताहिर साहब को भी बहुत पॉपुलर कर दिया था। भाई इस फिल्म में वो आमिर खान के पापा बनते हैं और इस गाने के वीडियो के एंड में वो वहां पहुंचते हैं जहां आमिर खान ये गाना परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इन रियल लाइफ जब दिलीप ताहिर साहब कहीं भी जाते थे ना उस दौरान किसी पार्टी में गैदरिंग में, वहां पे ये गाना चला देते थे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और बहनों भाइयों उस साल गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था ये गाना। और उसके बाद हम सुनेंगे वो गाना जो कुछ साल पहले, जी हाँ 1974 में पायदान नंबर एक पर आने से बस एक पायदान से रह गया। जी 1974 का टॉप सॉन्ग था मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एंड ऑन नंबर टू वॉज दिस आइकॉनिक सॉन्ग जिसके बगैर हर होली अधूरी है। भाई पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख कराए से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
4: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
3: साहब जी को साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
4: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछो भाई।
3: उसने कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले
4: मेरे को, दिख रहा है यहाँ से मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: किशोर कुमार को एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती थी या म्यूजिक? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था। संगीत को मैं पहला वो देता हूँ स्थान, और एक्टिंग जो है वो बाद में आता है। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी हैं, बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादा, मुझे एक्टिंग एक्टिंग मत करो, एक्टिंग छूटी होती है, एक्टिंग छूटी होती है, संगीत जो है दिल से निकले और दिल से जो चीज निकले वो
0: सामने वाले के दिल तक पहुंच ही जाती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

देवानंद साहब ने जीना तमान को देखा और सोचा कि मैं इसे हीरोइन बनाऊंगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बनी तो हीरोइन लेकिन पहले फिल्म से ही बहन बन गई, मतलब हरे रामा हरे कृष्णा में वो जो उन्होंने इतना आइकॉनिक रोल किया था, देवानंद की सिस्टर बनी थी, उनको उसके बाद ना सारे सिस्टर्स वाले रोल ऑफर होने लग गए। तब देवानंद साहब ने उनको कहा कि रुको जरा, सबर करो, ये रोल एक्सेप्ट मत करो। वो सारे रोल्स जीनत अमान ने रिजेक्ट किए एंड देन देव साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसमें वो एक्चुअली उनके ऑपोजिट थी एंड दैट फिल्म वाज हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold die.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: Cut, cut.
7: Who that?
6: Akbar.
7: Akbar who?
6: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
7: Cut, cut. Who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1.
9: Mirchi,
8: it's hot.
0: Purani jeans. With Charu, only on

ये गाना सुन के ना वो एक वो जोक वाला लेटर याद आ रहा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही जोक कि किसी को उसके गांव उसके घर से चिट्ठी आती है कि घर की छत टपक रही है, बाकी सब ठीक है। मुन्ने के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, बाकी सब ठीक है। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है, बाकी सब ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो लाइफ ऐसी है ना, रात को नींद नहीं आ रही है, बाकी सब ठीक है। EMI पे EMI कटे जा रही है, खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। घर वाले ताने मारते रहते हैं, बाकी सब ठीक है। 8 घंटे की नौकरी में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में ये ऐसा वाला सब ठीक ना हो, जेन्युइन वाला, अच्छा वाला, सच्चा वाला जो ठीक है, उस तरह का सब ठीक ठाक हो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।